नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हाँ। अज वीरवार है, शक संवत 1948 दे आशांग महीने की 12 तरीक, 23वीं सन 1926 दे जुलाई महीने की 2 तरीक है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकेंड हो रहे ने ते साड़ी आज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा दी इस खूबसूरत शुरुआत दे विच असी अपने सारे सुनन वालियां दा निघा स्वागत करते हां।

तो कुछ ही पलां च तुसी सरवण करोगे भक्ति संगीत दा प्रोग्राम वंदना। श्रीदी 7 बजे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस। सत बज के 2 मिनट ते सिलसिला शुरू होएगा। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया गल्ला बातां, नाल दी नाल गीतां दा डोज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे राही। 8:30 ते तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां। 8:40 ते पंजाबी बीट सॉन्ग्स दी धमाल पएगी प्रोग्राम अड्डी टप्पा दे राही। सवेर दे 9 बजे

हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, सिर्फ एक छोटी जी लाइन, बट इस पूरे दा भाव बदल जाता है कि मैं कोई बहुत चंगा इंसान नहीं हाँ, सब तो उत्तम इंसान नहीं हाँ, पर ये कहना कि संसार दे विच कोई भी बुरा नहीं है, ये जो तो सोच साढ़े दिमाग दे विच आ जाती है ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। सानू दूजियां दे विच नुक्स कढ़ण दी बजाए अपनी कमियां नू देखना चाहिए, अपने विच जो कमियां ने उन्हां नू लभना चाहिए, और बस उस परमात्मा दे अगे एक ही अरदास करनी चाहिए है कि जो भी भुलां हुंदियां ने, जिद्दां दे भी असीं कर्म करते हाँ, उन्हां नू बस बख्श दिता जाए, क्योंकि वह बख्शनहार है। उन्हें पता है कि इंसान गलतियां दा पुतला हुंदा है, गलतियां करता है और उस तो ही सीखता है। इसे करके जेकर हर दिन असी जिंदगी दे विच कुछ चंगा करन दी कोशिश करते हाँ, कुछ अगर माड़ा हो भी जाता है तो उस रब अगे, उस परमात्मा अगे यही बस अरदास करनी चाहिए है कि वह बख्श देवे, जिस तरह भी साढ़े कर्म वो ठीक कर सकता उसनों करता।

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाकी असं जिंदगी दे विच ना जो कुछ भी सोच लैने आ ना उही साडी जिंदगी दे विच हुंदा है। असं जिस तरह का समा अपने लिए सोचते हाँ या फिर जो भी अपनी जित हार, असल हार या जित हमेशा थोड़े मन दे विच हुंदी है। अगर मन दे विच दिल दे विच सोच लिया कि मैं हार गया, हार मान ली, तो तुसी हार जांदे हो। पर जेकर तुसी मन दे विच जित्तण दा पक्का इरादा कर लैंदे हो ना, तो तुहानू कोई भी जिहड़ा है, कोई भी रुकावट जिहड़ी है ना, तुहानू हरा नहीं सकदी। तुहानू हमेशा थोड़ा दिल, थोड़ा दिमाग, थोड़ा मन यही सब फैसले करवाउण दे विच या फिर नतीजे तक पहुँचण दे विच मदद करदा है।

FM बयान 107.7 MHz, FM रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेरे 7 ट्रेन है। पेश ने हुन तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शाहरा NH 148A ले 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरी कमेटी को अपनी सिफारिश छेती ही सौंपण लई कहा। भारत और मलेशिया ने कल नवी दिल्ली दे विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुआ की समीक्षा की। पंजाब समेत देश भर दे विच विकसित भारत रोजगार अते आजीविका गरंटी मिशन ग्रामीण कानून लागू हो गया है। पंजाब सरकार दे वल्लों कल संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सतिकार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु अते सेवा कर GST की वसूली लई 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत वल्लों बागवानी विभाग के कामकाज की समीक्षा। प्रशासनिक सुधारा अते किसान पक्षी विकास से दिता जोर। पंजाब राज खुराक कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने मीटिंग दौरान राशन डिपुआ आंगनवाड़ी केंद्र अते मिड डे मील की समीक्षा का जायजा लिया। मौसम विभाग ने अज तो

0: FM 102.3 सत मेगा हर्ट्स FM रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेर दे 8:30 हो रहे ने। आओ सुनते हैं पंजाबी खबरां साडे प्रदेशिक चैनल तो।
1: Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra.

मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले दो दिनों च पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तरी अरब सागर गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ते राजस्थान च भी अगे वधेगा। केंद्र सरकार ने असाम च हाली च आए हड़ां नाल नजिठण लई पूरा सहयोग देण दा भरोसा दिता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ते संसदीय मामलों बारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी च सूबा सरकार नाल एक समीक्षा मीटिंग की थी। मीटिंग च सब तो वध प्रभावित धेमाजी जिला समेत सूबे भर विच हड़ां कारण होए नुकसान का जायजा लिया गया। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत इंग्लैंड दरम्यान बीती रात चेस्टर ले स्ट्रीट विखे पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द कर दिता गया। इस दे नाल ही पांच मैचों की लड़ी 0-0 नाल बराबरी थी है। पहला बल्लेबाजी करदिया भारत ने निर्धारित 20 ओवरों च 7 विकटां दे नुकसान ते 199 दौड़ा बनाईया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सब तो वध 18 दौड़ा बनाईया। मीह कारण इंग्लैंड की टीम अपनी पारी पूरी नहीं कर सकी। लड़ी का दूजा 2020 मैच शनिचरवार नूं मैनचेस्टर च खेडिया जाएगा। ते आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकायुची नाल अज नवी दिल्ली च सालाना शिखर सम्मेलन पद्धरी गलबात करेंगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन ईपीएफओ वालों वित्तीय साल 2025-26 लई ब्याज दर 7.5% रखने का ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत में वट्सएप के नवे यूजरनेम फीचर संबंधी मीटा नूं नोटिस जारी किया। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मंगे। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारे श्री गुरु सिंह साहब ढाउन की सख्त निंदा की। मौसम विभाग वालों दक्षण पछमी मानसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:10 ते। नमस्कार।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के नाल अज नवी दिल्ली दे विच सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात करनगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO दे वल्लों वित्तीय साल 2025-26 दे विच व्याज दर 8.25% रखण दा ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत दे विच व्हाट्सएप दे नवे यूजर नेम फीचर संबंधी मेटा नूं नोटिस जारी किया, 3 दिनों दे अंदर स्पष्टीकरण मंगिया है। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब नूं ढाउण की सख्त निंदा की। दिल्ली सरकार ने हवा प्रदूषण नूं रोकण दे लई सर्द रुत का स्थाई प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया। भारत ते मलेशिया ने कल नवी दिल्ली दे विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग दे पहलुआं दी समीक्षा कीती। पंजाब सरकार दे वल्लों कल संगरूर जिले दे धुरी तों मुख्यमंत्री मावां तियां सतिकार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु अते सेवा कर GST की वसूली के लिए 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। मौसम विभाग के वलों दक्षण पछमी मानसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के कई थावां के उत्ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब के कई थावां के उत्ते देर रात तो मीह पै रहा है। मर्दा के क्रिकेट के भारत और इंग्लैंड विचकार बीती रात चेस्टर ले स्ट्रीट विखे पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द होया। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।

0: हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार जी। दोबारा तो आ गई हाँ जी, मैं थोड़ी अपनी आरजे अंजलि। दिलां तो दिलां तक दियां गल्लां बातां जिहड़ियां ने ना, उहनां नूं बस साझा करन दे लई आई हां मैं। और मैं क्या जी, दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दी शुरुआत हो चुकी है। पूरे 10 बजे तक थोड़ी नाल दिल तो दिल तक दियां गल्लां जिहड़ियां ने ना उह करनियां ने। और तुसी भी अपने मैं क्या दिल दियां गल्लां मेरे तक पहुँचाणियां ने 9855 10 10 27 नंबर दे उत्ते वट्सअप करना है। ऑडियो मैसेज कर सकते हो, टैक्सट मैसेज कर सकते हो। अपने दिलां दे भाव, कोई भी टैलेंट हैगा, कोई भी हुनर हैगा, मैं क्या मेरे तक पहुँचा दो। और मैसेज ज़्यादा हैलो हाई वाला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। मैं कि जी जिन्ना शॉर्ट दे विच तुसी अपना मैसेज भेजोगे ना, उन्ना ही मैं क्या प्यार जिहड़ा है बाकी लिसनर दोस्त भी उन्होंने भी समा मिल जाएगा साढ़े तक अपने जज्बात अपने भाव पहुँचाण का। तो फटाफट मैसेज करने मैं क्या शुरू कर देवो और अपने मैसेजेस साढ़े तक पहुँचाने शुरू कर देवो। और तुसी मैं क्या अज ना गलबात करने, मैनू अचानक तो ही एक किस्सा याद आ गया कि असी ना कई बार देखा है, असी सफ़र तो करते हैं कई बार बस का, कई बार ट्रेन का, कई बार कोई होर लोकल कोई किसी भी तरह दियाँ साड़ियाँ पहले टाइम के उत्ते साढ़े सफ़र साडा सफ़र नूं सौखा बनाउण दे लई गड्डियां हुंदियां सीगियां, उन्हां दा असी सफ़र कीता होएगा। पर कदी इदां होया कि असी अपने सफ़र ते पैसे देना ही भुल गए होईए, बस दे विच बिना टिकट तो सफ़र कीता होवे, ट्रेन दे विच बिना टिकट तो सफ़र कीता होवे, बस जहाज दे विच तां पॉसिबल नहीं हैगा। कोई ऐसी थां, कोई ऐसी जगह तुसी गए होवो जिथे कि गए तां ट्रेन बस तो तुसी सफ़र कीता होवे, या फिर कोई अपनी कन्विंस भी लई होवे, पर मतलब अपनी कन्विंस नहीं किसी दी हेल्प लई होवे, पर उहदे लई पैसे देना ही भुल गए होवो। तो फटाफट मैं क्या मैसेज कर दवो और अपने विचार जुड़े ने ना, अपने कोई भी किस्सा कहानी जिहड़ा है इस दे नाल जुड़िया होया मेरे नाल साझा करना चाहते हो, साडे लिसनर दोस्तों ने नाल साझा करना चाहते हो, तो वह फटाफट साझा कर दो। क्योंकि टाइम देखो ना साडे कोल थोड़ा रह जाता, फिर एंड दे विच साडे लिसनर दोस्त ही शिकायत करते हैं कि साडा मैसेज नहीं प्रोग्राम दे विच शामिल कर दे। फटाफट मैसेजेस मैं क्या भेजने शुरू कर दो और की ने थोड़े विचार और ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
1: बाबा गड्डी क्यों रोकी आ?
2: की दसा कुड़िए, गड्डी दा तां गेर ही अड़ गया।

0: छुपकई छुपकई।
1: वेल मैं ज्यादा फ्लो विच चली गई हूं, वापस आओ वापस आओ। ये फिल्म का नाम सी छोरी छोरी चुपके चुपके। टाइटल सॉन्ग तुसी सुनया सी अलका याग्निक एंड बाबुल सुप्रियो दी आवाज दे विच। हुन अगला गीत कुछ मौसम दे अकॉर्डिंग ही हैगा, एंजॉय कर लो इस नु भी क्योंकि गल्ला होर भी ने मेरे कूल करन नु। तुसी एंजॉय कर रहे हो ना? हां हां मैनू पता है, मैनू पता है तुसी एंजॉय कर रहे हो। करो ना फिर एंजॉय अगला गीत भी।

वेलकम बैक प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा बच्चे आद स्कूल गए मामा बहुत खुश ने आहा मजा आ रहा आज क्यों आ रहा है क्योंकि जी बच्चे स्कूल खुल चुके ने मदर्स नु थोड़ी जी रिलैक्सेशन मिली हैगी है क्योंकि जेडे तूफान मेल ने वो अज जिहड़ा स्टेशन हैगा स्कूल दा उत्थे पहुँच चुके ने ते खूब इंजॉय कर रहे ने एंड मामा घर इंजॉय कर रही ने भई देखो छुट्टियां जड़ियां हैं बहुत जरूरी है वेकेशन बहुत जरूरी हुंदी है पर बच्चों नू संभालना बहुत ही वड्डा टास्क हैगा जेडे के पेरेंट्स टास्क पूरा हमेशा करते ने पर जिहड़ी मदर्स हुंदियां ने ना उन्हां नू अपने लिए टाइम नहीं मिलता हैगा सो माताओ अपने लिए भी टाइम कढ़ना सीखो बच्चों इंडिपेंडेंट बनाओ जे कुछ मंगते ने उन्होंने कहो भी बेटा जी आप जाओ लेके आओ पानी पीना जाओ बेटा वो किचन है किचन च फ्रिज है फ्रिज न खोलो उदे विच बोतल है उदे विच पानी पियो पर उनू बोतल नू भर के रखना है वो सिर्फ मम्मी की ड्यूटी नहीं हैगी है वो सारे की ड्यूटी है तो जिन्हें जिन्हों प्यास लगती हैगी है वह पानी भी पियो तो बोतलों भर के भी रखो हाँ जे जिन्हों बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी चिल्ड पानी पीन की बहुत ज़्यादा काली पई रही है वैसे मैं कुछ होर बोलना चाहती सी पर मैं नहीं बोल सकती हैगी हाँ सो उन्होंने यह चाहिए है कि बर्फ़ कड़न तो बाद जी बर्फ वाली ट्रे खाली है ना वो नहीं रखनी क्योंकि जो खाली ट्रे देखने मिलती है ना ओहो हो इन्ना क गुस्सा आता ना फिर तो मम्मी का दिल करता होंगे कि एक फ्लाइंग चप्पल मारीे एंड ठा टारगेट पर जाके लगे टारगेट कौन जी बच्चे वैल बच्चों तुसी भी ये गल सुन लो वैसे बच्चे कितने सुन लेंगे मेरी गल बच्चे तो इस वेल स्कूल ने चलो माता जी तुसी सुन लो तो बच्चों समझा दियो जो फिर भी ना समझ आए फिर तो फ्लाइंग चप्पल जिंदाबाद

अकेले हम अकेले तुम नहीं, मैं शेरो शायरी नहीं करने लगी, फिल्म का नाम से ज़्यादा हुणी तुसी गीत सुनिया उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ दे विच। वाह मज़ा आ गया, बहुत ही वधिया गीत सुनिया तुसी। वेल गीत जिहड़े हुंदे ने ना दिल नूं सुकून दिंदे ने, एंड इदां ही हुंदे ने कुछ फ्लावर्स फुल अलग अलग वरायटी दे जिहड़े कि बहुत सोहणे हुंदे ने, उन्हां दी जदों असीं खुशबू लैंदे हाँ सानूं बहुत अच्छा लगता है, दिल नूं सुकून मिलता है। पर तुहानूं इह पता है कि कुछ फ्लावर्स जिहड़े ने फुल थोड़े जिहे डेंजरस भी हुंदे ने। हुण तुसीं सोचो कि भी इह कितना डेंजरस हो सकते हैं, तुहानूं दस देवां कि कुछ इदां दे प्लांट्स हैगे आ जिहड़े कि छोटे छोटे जीव जंतु है उन्हां नूं खा जांदे ने। बिल्कुल सही गल कह रही हैं, जिदा कई लोग आपां जे इंसानां दी गल करिए, कई वैजीटेरियन होंदे ने कोई नॉन वैजीटेरियन होंदे ने, सो उस तरीके दे प्लांट्स होंदे ने। हुण जिहड़े प्लांट्स खा जांदे ने उन्हां विच कुछ दे नाम मैं तुहानूं दसदी हैगी है कि उन्हां विच एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। इह जिहड़ा प्लांट हुंदा हैगा एक तां हुंदा है जिहड़े थोड़े अग्गे दंदे बने हुंदे ने, जिते ही कोई विच आ के जानवर छोटा मोटा बहिंदा उहनूं उह अद्धा टप इदां करके बंद कर लैंदा ते खा जांदा उहनूं। हाँ जी मैं सही गल कह रही हाँ। तो होर भी कुछ इदा दे प्लांट्स है जेडे जिस तरीके दे नाल इस तरीके की शेप ना बने होंगे कि जिदा एक निकी जी बोटल हैगी है एंड उत्ते एक ढक्कन है, जिदा ही वो अंदर कोई जीव जंतु निका मोटा गया उपरों उन्हें ढक्कन बंद कर देना एंड वह अंदर रह जाएगा। इस तरीके जो तुम किसी भी फ्लावर की खुशबू लेंदे हो ध्यान रखियो तुहाडा नक ना फड़ ले। मैं सच्ची कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही है कि इदा के होंगे, तुम सर्च कर लियो। वैसे कईयों को पता होना, ईवन जो छोटे बच्चे ने ना उन्होंने पता होना, उन्हें साइंस की जी बुक हैगी विच हर एक चीज़ लिखी होंगी हैगी है, तो उन्होंने तो पता लग जाएगा। बच्चों पूछ के देखियो, डेफिनेटली उन्होंने पता हो।

घायल घायल घायल फिल्म का गीत तुसी सुनिया हुणी शबीर कुमार आशा भोसले कुमार सानू दी आवाज दे विच। घायल बहुत ही अच्छी मूवी थी, बड़ा मज़ा आया से देख के, तुहानू भी आया से मैनू पता है गया। होर टाइम हो रहा है जी, सिर्फ तो सिर्फ 13 मिनट रह गए ने प्रोग्राम खत्म होने च गीत बहार, क्योंकि उस तो बाद प्रोग्राम शुरू होएगा पंजाबी तड़का। उहदे लिए अपना फोन चार्ज कर लिया ना तुसी, देखो अपनी फोन की बैटरी जिहड़ी हैगी चार्ज कर लो, क्योंकि अगला जिहड़ा प्रोग्राम है उहदे विच किन्नी बारी कोशिश करना पैना फिर जाके नंबर तुहाडा मिलना हैगा। वैसे मेरा एक बारी नंबर मिल चुका है, बड़ा मज़ा आया सी, बड़ा मज़ा आया सी मैनू। वैल इंजॉय करते हैं अगला गीत जो मैं प्ले करन दे लगी हैगी है। और तुसी सोचो कि आज पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच केड़ियां गल्लां दा तड़का लगेगा। हुण तुसी सोच रहे होगे भी आज तो कुछ खास है जिहड़ा ये बार बार बोल रही है। कोई गल नहीं जी, इंजॉय करते हैं इस गीत नू। गीत पहला भी बहुत सोहने चल रहे ने, हुण अगला गीत भी बहुत सोहना आ रहा हैगा, दिल नू सुकून मिल रहा है। इंजॉय करते हैं इस गीत नू।

पूरा ट्रक न्याणिया दा एक विच दाज दे आया जे आउंदा अतबार ना तैनू मेरे उत्ते नारे देव थरीकियां वाले कोलों पुछ ला तू मटियारे आथण नू लेके जाना उना ले मुर्गी दाना जे घरे पहुंच गए कल्ले लो वोटी गोड्या।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

प्यार मोहब्बत ना रहो, क्योंकि प्यार मोहब्बत ही वंडांगे तां ही अगली जनरेशन जिहड़ी है ना होर भी अच्छी होएगी, नहीं तो फिर औखा ही हैगा। वैल तुसी नंबर मिला सकते हो 0181 2342174 ते इन्हां दी फरमाइश तैयार है साबरकोटी दी आवाज़ च गीत।

करनगे। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO वालों वित्तीय साल 2025-26 ले ब्याज दर 8.25% रखन दा ऐलान। केंद्र सरकार ने भारत विच व्हाट्सएप ते नवे यूजर नेम फीचर संबंधी मेटा नू नोटिस जारी किया है। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मंगया। भारत ने पाकिस्तान के फरूकाबाद 125 साल पुराने पवित्र गुरद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब नू ढाण की सख्त निंदा की। दिल्ली सरकार ने हवा प्रदूषण नू रोकण लई सद रुत दा स्थाई प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया। भारत ते मलेशिया ने कल नवी दिल्ली विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। पंजाब सरकार वालों कल संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना की शुरुआत। पंजाब ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु और सेवा कर GST की वसूली विच 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया। मौसम विभाग वालों दक्षण पछमी मानसून के अगे वधन के मद्देनज़र अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते देर रात तो मीह पै रहा है। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ते इंग्लैंड विचकार बीती रात चेस्टर स्ट्रीट विखे पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच मीह कारण रद्द होया। ASN FM News Headlines।

हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। पहुंच गई फे द्वारा मैं प्रोग्राम लेके होम स्वीट होम तुम्हारे फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। मैं तुम्हारी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा। हुण तुसी सोच रहे होगे भई की करना है, तुहानू वैसे पता ही है कि डायरी ते पेन लैके बैठना है, क्योंकि इस प्रोग्राम दे विच ते किन्नी सारी गल्लां हुंदियां, रेसिपी दसदी हैगियां, उहदे इलावा होर कई नुस्खे दसे जांदे ने, कोई काम दियां गल्लां दसियां जांदियां ने, घर नूं किदां सोहणा बनाउणा है उह दस्सिया जांदा हैगा, काम ते तुसी किदां अपनी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट कर सकदे हो उह दस्सिया जांदा हैगा, बहुत सारियां गल्लां कीतियां जांदियां ने इस प्रोग्राम दे विच। ते फिर पेन एंड पेपर तैयार है ना। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गीत दे नाल, उस तो बाद की खास है इस प्रोग्राम च पता लग जाएगा जल्दी।

12:18 प्रोग्राम चल रहा होम स्वीट होम ते मैं गल कर रही हूँ जी टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी ऐप वैबसाइट यूज़ करते हो उस तो पहला जी कंडीशन आदि उन्होंने ध्यान में रख्या करो। कई बार तुम नोट किया होना है कि कुछ वैबसाइट्स या ऐप जड़िया ने वह तो फ्री ट्रायल दें, मतलब कि एक महीना तुम फ्री ट्रायल ले सकते हो ऐप का, दैन उस तो बाद सबसक्रिप्शन वो लैनी पेगी और पेमेंट तो करनी पेगी। पर फ्री ट्रायल भी तो मिलता जो तुम अपन बैंक की कार्ड डिटेल्स वो फिल कर दो। एंड जे तुम वो सबसक्रिप्शन मतलब ट्रायल पीरियड जो फ्री होंगी है जिदा मनो कि 30 दिन वह फ्री है, तुम 29वें दिन जे उसनू कैंसल कर दो तो तुहाड़ी सबसक्रिप्शन जिहड़ी है अगे कॉन्टीन्यू नहीं होएगी, तुहाड़े पैसे भी नहीं कट्टे जाएंगे। बट ये जिहड़ियां चीज़ां ना उहदे विच उन्होंने इदां दी टर्म्स एंड कंडीशनस रखियां हुंदियां है जिहड़ियां कि आम इंसान तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह लीगल लैंग्वेज विच हुंदी है जिहड़ी कि ज़्यादातर आम जनता नूं या असी कह सकते कईयां नूं नॉलेज हुंदी है कईयां नूं नहीं हुंदी हैगी। सो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, जे तुसी कोई फ्री ट्रायल किसी भी ऐप का यूज़ कर रहे हो या वैबसाइट पर कुछ यूज़ कर रहे हो दैन वह फ्री ट्रायल के अंदर अंदर ही तुसी उहदी सबसक्रिप्शन कैंसल कर सकते हो। जे तुसी उस तो वध चले गए तो अपने आप तुहाडे जिहड़े ने पैसे कट जाणगे क्योंकि कई कंपनीज़ दे विच लिखिया हुंदा है कि असी पेमेंट डिडक्ट कर सकते हैं एंड जिद्दां ही ट्रायल पीरियड खत्म हुंदा है तुहाडे पैसे कट्टे जाते हैं। सो निकिया निकिया चीज़ा है जड़ियाँ कि सानू आप समझनिया पैनिया है। डेटा जड़ा हुंदा तुहाडा बहुत ही प्राइवेट हैगा, किसी नू दसना नहीं हैगा। बट ये जड़ियाँ कंपनीज़ कुछ कंपनीज़ की मैं गल कर रही हूँ जिहदे नाल की हुंदा है कि जदों आपां आई एक्सैप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ते सिलेक्ट करते हैं तो तुसी एक तरीके ना उन्होंने कह देंदे हो अपने वालों हाँ जी तुसी मेरा पर्सनल डेटा मेरा नाम फोन नंबर ईमेल आई डी फोटोज सब कुछ तुसी शेयर कर सकते हो, पर तुसी वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िया नहीं है। सो उस लई तुसी

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

डेढ़ चम्मच चलेगा। शहद चाहिए है 2 छोटे चम्मच, तिल 1 छोटा चम्मच। सो पेस्ट लिए एक बार फिर मैं दस दनी की चाहिए, कोरियन गोचू यांग पेस्ट, सोया सॉस, सिरका सफेद वाला, शहद चाहिए वे नाल तिल चाहिए ने। हम मैं तुम्हें यह भी दस दनी है कि यह सॉस जी है बनाई कि जाती है, ये कह सकते हैं थोड़ी जी स्वीट सॉस है, स्पाइसी है, खट्टी है, मतलब सब कुछ मिक्स जहा है। ये बनती किदा हैगी है, फरमेंट किए जाते हैं, मतलब कि जो सोयाबीन हैगा, राइस है, तो कोरियन रेड चिली होंगी हैगी है, लाल मिर्च, इन सारियां पहला फरमेंट किया जाता है। जिस तरीके असी रख दें ना, रात को आप कोई चीज़ भीं के रख दें, इस तरीके इन्हों भीं के रखा जाता। उस तो बाद ये पेस्ट बनती हैगी है, ये प्रॉपर फ्लेवर होंगे हैगा, किन्ना क तिखा किन्ना क मिठा, मतलब खा के मज़ा आ जाएगा थानू। सो यह सॉस इस तरीके बनती है, ये कोई बिल्कुल टोटली वेज सॉस हैगी है, घबराने की कोई लोड़ नहीं है। ये सारे इनग्रीडियंट्स है। हुण इस तों बाद इसनूं बनाना किस तरीके दे नाल है वो तुहानूं दसूंगी। इनग्रीडियंट सुन के तुसीं थोड़ा जिहा परेशान हो सकदे हो, क्योंकि इहदे विच जिहड़ी सॉस दा मैं नाम लिया साडे लई नवीं हैगी है, बट जो तुसीं यूज़ करोगे तुहानूं अच्छा लगेगा। फिलहाल सुरजीत विंद्रखिया दे आवाज़ दे विच इह गाणा सुन लैंदे, थोड़ा जिहा तड़का पंजाबी ला लैंदे इहदे विच, पर तुसीं एक्चुअल च तड़का पंजाबी ना लाइयो, इहदे च कोरियन तड़का ही लाइयो, ज़्यादा वधिया रहेगा। सो इनग्रीडियंट्स दस दित्ते आ, हुण बनाना किस तरह उहदे लई इंतज़ार करो।

अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं, ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं।

0: उमंग कहती है।
1: अरे प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: क्या प्यार रुक नहीं सकता।

0: फिर गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पाधा पागा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
1: दिल की उमंगे हैं जवान।

जवा मुनीम जी, फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत को आवाज़ दी थी हेमंत कुमार, गीता दत्त और ठाकुर ने।

0: सुनिए ना, एफएम रेनबो चल रहा, मिंटी मेलोडीज चल रहे।
1: वाह जी वाह, बहुत खूब गीत फिल्म मुनीम जी तो असी सुनिया, मतलब गीत विच इन्ना क ज़्यादा मज़ा आया सुन के।
0: आप भी गाई है ना? वाह वाह,
1: आउट ऑफ म्यूजिक जा रहे सी, बट टू गुड, मज़ा आ गया गीत सुन के। फिल्म ऐद ही तुसी इंजॉय की, फिल्म का गीत इंजॉय किया, तो हूँ अगला गीत मैं प्ले कर लगी हाँ सारे लिए। मज़ा आता ना इदा गीत सुन के, आह हा, दिल खुश हो गया। वो एक अलग ही दौर था, वो समय ही कुछ और था, उन शांत और खूबसूरत फिजाओं में, उन शांत और खूबसूरत फिजाओं में बस चाहतों का शोर था, बस चाहतों का शोर था।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज ते ब्रेक ते जान तो पहला तुसीं सुनिया महेंद्र कपूर ते आशा भोसले दी आवाज़ च गीत। फिल्म दा नाम सी दहलीज। दीवाना हूँ तेरा मुझे इनकार तो नहीं, कैसे मैं कह दूँ मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तो की होगी तुम्हारी निगाहों ने, और अकेले इसका गुनहगार मैं तो नहीं। सुनते अगला गीत, फिल्म का नाम दसवा दस ही दिनी है। इस गीत नो आवाज़ दिती है रूना लैला ने ते नाल भूपेंद्र ने, ते फिल्म का नाम है घरौंदा। इस गीत नूं इंजॉय करते हैं प्रोग्राम च, ते मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम जारी रहेगा 1:50 ते, क्योंकि 1:40 ते तुसीं सुनोगे खबरां। फिलहाल दी कड़ी आ रहा है गीत।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री साने ताकायुची दरमियान सलाना शिखर सम्मेलन पत्री गलबात नवीं दिल्ली विच जारी, कई समझौतियां ते दस्तखत होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री भुपिंदर यादव का कहना है कि सरकार विकास को स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राही चुगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। सलाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। बेंगलुरु दक्षणी तालुक विच एक चट्टान डिगण नाल 7 प्रवासी मजदूरों की मौत, कई होर जख्मी। ते पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच मानसून की छेती आमद नाल तापमान विच भारी गिरावट, 7 जुलाई तक तीनों थावां ते भारी मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच अपने जापानी हमरुतबा साने ताकाइची नाल सलाना शिखर सम्मेलन पत्री गलबात कर रहे ने। इह शिखर सम्मेलन दोवां धिरां नूं समुच्चे दवल्ले सहयोग की समीक्षा करन अते इन्हां नूं मजबूत बनाउण दे नाल नाल आपसी हितां दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा मौका प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ते प्रधानमंत्री ताकाइची विचकार गलबात तो बाद कई समझौतियां दा वटांदरा होने की भी उम्मीद है। अज पहला राष्ट्रपति भवन विखे प्रधानमंत्री ताकाइची दा रस्मी स्वागत किया गया। इस मौके ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद सन। जापानी प्रधानमंत्री कल शाम भारत

चली मैं चली जी समा कह रहे हैं कि इजाजत ले लो, सो मैनू दे दियो इजाजत। प्रोग्राम मिड डे मेलोडी से थे खत्म करन दी। सो दिस इज योर आरजे इंद्रप्रीत सरा सिंह यू बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते प्रोफेसर फिल्म का गीत लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी की आवाज़ में तुहाडे लिए।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। तुसी सुन रहे हो अपना मनपसंद प्रोग्राम दिल आज शायर है। मैं हां तुहाडा अपना मेजबान दोस्त RJ जोरावर सिंह, अते आज दी इस खूबसूरत महफिल विच तुहाडा दिलों स्वागत करदा हां। कहंदे हन कि रिश्ते कदे गलतियां नाल नहीं टुटदे, वह उदों टुटदे ने जदों असी माफ़ करना ते माफ़ कर देना भुल जांदे आ। गुस्ताखी माफ़ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, सगों एक अजिहा जज्बा है जो टुटे हुए दिलों नूं जोड़ सकता है, रुसियां नूं मना सकता है ते दूरियां नूं नेड़ता विच बदल सकता है। गुस्ताखी दा अर्थ बेअदबी जां हद तों वध गल कह बैठना हुंदा है। गुस्ताखी माफ़ निम्रता नाल

जैसा हम अपने मन में इरादा रखते हैं। जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, भीड़ में भी हम खुद को तन्हा रखते हैं। आए हाय, हम तो बस ये सोच कर खुश हैं, ये चंद्र अपने बड़ों का साया सिर पर रखते हैं। क्या बात है, बहुत सोहना जी। मतलब जिहड़े शेर हुंदे सानू बहुत गहरी सोच विच लै जांदे ने, ये भेजा जी सानू खाकसार उदय चंद्र जी ने, और विक्टोरिया गार्डन जलंधर तो जोरावर सिंह जी नू प्यार नाल भिजी सत श्री अकाल। साडे वल्लों भी सत श्री अकाल जी, नमस्कार। अगला स्नेहा सानू भेजा जी लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी ने। खुद मैंने अपने आप नू याद दा गुलाम कर दिया, खुद मैंने अपने आप नू याद दा गुलाम कर दिया, खुद तेरी खातिर बदनाम कर दिया, कि सबूत दवा अपनी मोहब्बत, की सबूत दवा अपनी मोहब्बत दा, सीने दे विच दिल सी ओ भी तेरे नाम कर दिता। हाय क्या बात है। लो जी अगला स्नेहा सानू आया, सत श्री अकाल, दिल आज शायर है विच जोरावर सिंह जी, बलविंदर सरा पिंड मोरजंडा सिखा हनुमानगढ़। तेरे प्यार की राहों पे चलते जाना है, हर मुश्किल को हंसते हुए सहते जाना है, थाम कर तेरा हाथ ओ मेरे हम सफर, जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराते जाना है। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेजेस भेज दें। अल्लाह जी, एक मैसेज आया सानू, काफ़ी लंबा है, चलो पढ़ दें। मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा, बसंत सिंह टेलर, बेटा लवदीप सिंह जसल। तू जिद्दां मर्जी जी, ये जिंदगी तेरी है, तेनू पूरी आजादी है, पर नशे वाले राह पैर ना पाई, नशा कर दिंदा जिंदगी की बर्बादी है, समाज च कोई मूँह ना लावे, जो हुंदा नशियां आदि है, जग विच रोशन ना कर जांदे जिन्ना दूर नशे तो रहण दी सौ खादी है। बी जसल दा आखे इको गल, नशा नहीं किसी मसले दा हल, तिप तिप करके मार दिंदा है, नशा हुंदा जहर सवादी है। जिंदगी जीवन दा तरीका सिख लईए, किवें गल करिए सलीका सिख लईदा, ना वड्डियां दी गल दा गुस्सा कर लईदा, नतीजा बाद च मिले सियाणियां दी गल कहीदा, कोई पै जे भरम फिर इकट्ठे हो के बईदा, कुछ सुन के सुना के वहम दूर कर लईदा, बिना गलों किसे नूं माड़ा नहीं ओ कहीदा, जुलम नहीं करना ना ही जुलम सहीदा, करे कोई जुलम ता हथियार चुक लईदा, पिछे किसे पिछे लग माड़े राह नहीं पईदा, छोटी छोटी गलों ऐवें नहीं लड़ पईदा, जसला भरावां नाल इकट्ठे हो के रहीदा, रब ने जो कीता अगे जो करूगा, रब दी रजा नूं खिड़े मत्थे मान लईदा। क्या बात है, बिल्कुल सही गल आ। साडे देश दा जिहड़ा इतिहास है वह इदां ही रहा, हमेशा असी जिहड़े मजलूम होए ने उन्हां दी हमेशा असी राखी कीती है। वाकई इंसानियत नाल भरपूर तुसीं सुनेहे भेज रहे हो, अपने दिल दे जज्बात भेज रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मेन बाजार पिंड चक्के जिला बठिंडा, बसंत सिंह टेलर, बेटा लवदीप सिंह जसल, बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं मैसेज भेजा। सो अगला मैसेज, अगला स्नेहा असीं पढ़ते हाँ जी, किन्हें भेजा सानूं देखते हाँ। बस मैनूं इह हुंदा कि असीं तुहाडे सारयां दे मैसेज जिहड़े ना पढ़ दईए, क्योंकि वेखो स्वाद ही तां ही आउंदा है ना। अगली बहुत खूबसूरत तस्वीर भेजी है जी किसी ने, छतरियाँ हटा कर मिलिए इनसे। क्या बात है, ये जो बंदे हैं बहुत दूर से आए हैं। ओके जी, ये लिख देने जी, प्रेम मार्केट बठिंडा तो अमरजीत जसल। वाह वाह वाह, बहुत सोहने इन्होंने तस्वीर भेजी है जी, बहुत खूबसूरत। ते ओके, एक और मैसेज भेजा इन्होंने, कहिंदे ने जिन्हां रिश्तियां नूं समेटण लई तुहाडा अपना वजूद खिंड जावे, और रिश्ते सांभण योग नहीं हुंदे। सियाणे कहिंदे हुंदे ने दूरी चंगी, पर वाकई किसे वक्त ना तुसीं हर इंसान दा, सियाणे कहिंदे असीं सत्कार तां करदे हां प्यार करदे हां, पर कुछ इंसान हुंदे आ दूरी दी दवाई उन्हां नूं देनी पैंदी आ, ते फिर उस तां ही

जी नहीं, एक और आपकी फरमाइश है वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

वेलकम बैक दोस्तों, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिदा नाम है दिल आज शायर है। कहंदे ने कि गुस्ताखी हो गई जे गल्लां विच कदे साडी, मुस्कुरा के माफ कर देना, यही है यारी साडी। गुस्ताखी लफ्ज़ां दी सी, दिल दी नहीं सी, कदे जे दिल दुखिया होवे तेरा सिर चुका के माफ़ी मंग दें। रिश्ते उही खूबसूरत हुंदे ने जिते अहंकार नहीं हुंदा। गुस्ताखी भावें हो जावे पर माफ़ी मंगण तो इनकार नहीं हुंदा। हर गुस्ताखी दा इलाज सिर्फ एक लफ्ज़ है, माफ़ कर दिओ। इस विच ही रिश्तियां दा असल नूर है। गुस्ताखियां तां इंसान तो ही हुंदियां ने, माफ़ करना ही फरिश्तियां दी पहचान हुंदी है। दिलां नूं जितना होवे तां झुकना सिख लो, गुस्ताखी तो बाद माफ़ी मंगना सिख लो। देखो जी, जिंदगी दे विच सियाणे कहिंदे ने कि सब तो वड्डी जिहड़ी तुसीं किसे नूं गिफ्ट दिंदे हो ना,

0: जी
1: उसने हिंदी तबाह कर दी
0: जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात का असर लें और अपनी भाषा को भी सुधारें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। के टंडन जी हमारे साथ थे, जो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, थिएटर डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, पोएट्री की बुक्स लिख चुके हैं, बॉलीवुड और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, और उनकी किताब चेजिंग केओस भी, ऑटोबायोग्राफी, जरूर आप पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी

0: श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था

0: युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
4: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
5: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस

0: वत्स है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूं। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गद्दी पे बैठ कर
7: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो,
11: महाराज जय हो।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले

0: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम सब अच्छे हैं।
3: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
0: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
0: जी मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
0: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
0: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
0: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर मेरा नाम दिवाकर है।
3: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
4: जी सर।
3: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
1: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर।

0: समझे?
1: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
2: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
2: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
4: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहता आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार जी।
1: अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल, तो उठाइए अपना फ़ोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर। सवाल जो है 011-2342-1080 और 011-2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर 9868-1070 पर भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन एक

0: डॉक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अगर अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कीजिए ना फ़ोन हमें। हमारा नंबर है 01123421080 और 01123421082, और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बाद बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या?
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझें, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं पूर्ण आनंद के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है। जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार, विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को विकसित करते हैं, उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
0: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है। वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
0: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर लें कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है।
0: हाँ,
2: है ना
0: जी।
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके। हाँ। और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व हैं उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोची है आज से
0: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है
0: जी।
2: अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें
0: जी,
2: तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
0: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो हैं वो आपको एक नेटवर्क के थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जेंट आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस है जैसे

0: वायरस है, बैक्टीरियाज हैं
1: जी
0: आपके इन, और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं,
1: जी
0: जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जैसे
1: जी
0: कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए
1: हाँ
0: किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी, मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है, और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल. अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, तो
1: हाँ
0: फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीज़ें
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है
1: हाँ
0: जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं,
1: जी जी
0: इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं.
1: जी
0: तो केमिकली जो, अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा.
1: जी
0: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते,
1: हाँ
0: ये भी
1: ये
0: एक
1: तो नहीं.
0: है ना. तो
1: हाँ
0: देखिए, भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं
1: हाँ
0: जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं,
1: हाँ
0: है ना. एक NK होता है जो नेचुरल किलर होती हैं,
1: अच्छा.
0: और एक ये, मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है,
1: हाँ
0: प्रकृति ने, ईश्वर ने
1: जी
0: हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें डाली हुई हैं.
1: जी
0: और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे, और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीज़ों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की है या बाहर से आई हुई है जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए. तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व, जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो
1: जी
0: ना
1: जी
0: हो पाए,
1: जी
0: और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें. ये
1: जी
0: इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने कितने दिन, मतलब कितने सालों पहले कही थी. तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या हैं, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे. लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी, जो मैंने ये समझाने की कोशिश की है, उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी. अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं.
1: जी
0: धातुएं मतलब जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है,
1: जी
0: ये धातुएं हैं.
1: हाँ
0: अब ये धातुओं में कौन से, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज.
1: हाँ
0: ओज बोलते हैं
1: हाँ
0: ना कि
1: हाँ
0: आपका ओज कम लग रहा है,
1: हाँ
0: मतलब आपकी वाइटैलिटी
1: हाँ
0: ओवरऑल, जो आपको एक जूस की जो जरूरत है वो
1: हाँ
0: अब आपका कम लग रहा है,
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: बुझे बुझे से लग रहे हो. तो
1: हाँ
0: ये कहीं ना कहीं दिखाता है
1: हाँ
0: कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई. मैं बहुत
1: लो.
0: साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ
1: हाँ
0: ताकि ये लोग समझें कि हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें.
1: हाँ
0: इसीलिए आयुर्वेद की जीवन शैली,
1: हाँ
0: इसीलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो कहा गया है,
1: जी
0: इन सब के साइंटिफिक रीजन है, हम एक के बाद एक लेते चलते हैं.
1: हाँ तो डॉक्टर विनोद आपसे
0: जी
1: जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस ये कॉन्सेप्ट क्या है.
2: देखिए, ओज या ओजस ये
1: जी
2: वैसे हृदय में अष्टबिंदुवात्मक के इस मात्रा में रहता है,
1: जी जी
2: लेकिन जैसे मैडम ने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु,
1: जी
2: ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना
1: जी जी
2: पौष्टिक है,
1: हाँ
2: उससे जो रस धातु यानी उससे जो आहार रस मिलता है
1: जी
2: वो
1: जी
2: धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है,
1: हाँ
2: और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है
1: जी
2: उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है
1: अच्छा
2: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है,
1: अच्छा
2: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को
1: जी
2: बूस्ट करना,
1: जी
2: तो
1: जी
2: वो ओज धातु से प्रतीत होता है,
1: जी जी
2: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है, तो
1: अच्छा
2: ओज धातु का बड़ा महत्व है.
1: हाँ. तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है,
2: जी.
1: ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है. ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से.
2: जी देखिए, लंघन में
1: जी
2: जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं,
1: जी जी
2: जैसे कि आप लंघन क्यों कराते हैं,
1: जी
2: लंघनम आदौ चिकित्सा
1: जी
2: यानी पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब
1: हाँ
2: पहला पांव है
1: हाँ हाँ
2: वो
1: हाँ
2: है लंघन कराना.

0: अच्छा। उल्लंघन क्यों कराएंगे? जब अच्छा। शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, आम दोष की अवस्था होगी, तो देखिए बिना किसी औषध के आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन करा दीजिए। लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं। लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी
1: जी।
0: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी
1: जी, जी।
0: तो इसलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए व्रत की प्रथा चालू की गई कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी, शरीर की भी स्थिति होगी, तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं
1: जी, जी।
0: तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए
1: जी। तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखी आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है
2: जी, जी।
1: तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
2: देखिए ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
1: हाँ।
2: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है
1: जी।
2: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या संयुक्त है, या दो दोष ज्यादा है, तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखें तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो वो है नोट्स, इन सब में आपके जो है वो जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी हैं वो वहाँ पे हैं। अब वो कैसे खराब हो रही हैं कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं, जो पचा नहीं फिर खा लिया, तो हमारे यहाँ सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जब पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
1: जी।
2: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है और रस धातु रक्त धातु में नहीं हुआ है
1: जी।
2: अब आपने कहा कि लंघन, तो लंघन देखिए मतलब आपने अपने शरीर को खाने से वंचित रख रहे हैं, उसके अलग अलग पैटर्न है
1: जी।
2: कितना रखना, एक बार रखना, दो बार रखना, तीन बार और रखना
1: जी।
2: कि केवल अन्न त्यागना या केवल पानी पे रहना या दोनों ही त्यागना, ये सब आपकी बॉडी के जो टेम्परमेंट है और आपकी स्थिति जो है उसको चिकित्सक परीक्षण करके लंघन कराता है।
1: अच्छा,
2: ये जो नॉर्मल उपवास आपने आज रख लिया और कुट्टू की रोटियां खा ली और ये कर लिया, तो ये लंघन नहीं है।
1: अच्छा,
2: लंघन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो आम पाचन के लिए किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
2: पंचकर्म क्या है? शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे
2: नहीं, पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा अच्छा,
2: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन, मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए
1: जी।
2: तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है। हमारे स्रोत क्या है? जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वो नहीं हो रहा।
1: अच्छा।
2: तो वो रुके, ये सुनिए आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का, उसको ब्लॉक कर देंगे।
1: अच्छा।
2: तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा ये तो सबको मालूम है
1: जी,
2: है ना
1: जी,
2: नंब हो जाएगा है ना। तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व तो जहां तक पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच रहे, तो अवरोध हो गया, तो अवरोध हो गया। उस आम को हटाने के लिए लंघन

0: श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन चिकित्सक के निगरानी में। अब आपने पूछा कि पानी कैसे है, तो पानी का भी वही है, मैं एक गिलास पीती हूँ, आप दो गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या है। 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है, अगर वो हट रहा है तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, जिसके कारण आप स्वस्थ हो। जरा भी आप देख लीजिए, सोडियम बढ़ा दीजिए या कैल्शियम ये पोटेशियम बढ़ा दीजिए, या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना, वो सब आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी। और इसीलिए कहा गया है कि पानी जितनी भी सेल्स में, क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं
1: जी,
0: और इसी से सिक्रीशंस ब्लड जो है वो आपको पोषण सारी बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है। तो उसको लिक्विड रहना, कितना बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ये मालूम है ना।
1: जी, जी, जी,
0: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है। ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो कि फला कियो कि खाने के पहले पियो कि खाने के, ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले को और कितना पीना चाहिए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास एक बार में पानी पीना चाहिए, लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीने चाहिए, सिप सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि बहाना रसाना वो चलता रहे।
1: अच्छा, और डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं। ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं, इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन, बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि जो रोड मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं जो गरीब लोग हैं, तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है या?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। कि देखिए, जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो फाइट कर लेते हैं।
1: जी जी,
0: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है, स्किन में जो बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर है, और स्किन्स में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज पैथोजेंस है, केमिकल्स हैं, आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रोकते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन गट, मैंने कहा ना गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी के सेल्स हैं।
1: जी,
0: तो वो जो जो जिनको रोड में जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का, तो उनको खाना भी उतना ही है।
1: हाँ,
0: वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खा रहे हैं।
1: जी जी,
0: ये बात अलग है कि उनको माल न्यूट्रिशन है तो विटामिन सी डी जो हमें जरूरत है,
1: हाँ,
0: है
1: जी,
0: ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन डी मतलब डी की कमी है, वो अलग इशू है कि भाई वो माल न्यूट्रिएंट है, उनकी मैकेनिज्म भी स्लो हो जाएगी, आज नहीं कल। लेकिन जहाँ तक ये स्वच्छता की बात है, टू मच हाइजीन, मैं आपको बता दूं, कई लोग दिन भर अपने हाथ डिटॉल से धोते रहते हैं।
1: हाँ, तो यही इनका पूछना है।
0: ये आपको मैं बता दूं, दिस इज अनदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो। तो स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है, देखिए हर चीज का एक साइंस है। टू मच हमारे यहाँ कहते हैं आती सर्वत्र वर्जित और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्जित है ना, तो और उल्टा सीधा और भी वर्जित। तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि समदोष समाग्नि, हर चीज सम इक्विलिब्रियम में रखिए, तो प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप भी स्वस्थ हो।
1: जी डॉक्टर विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या, तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है?
2: देखिए, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये एक ऋतु, जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतुएं हैं, वैसे आयुर्वेद में षड ऋतु मानते हैं, 6 ऋतुएं मानते हैं, पर ज्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को। इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसकी जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है, वो सिर्फ

0: आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: आपके आहार पे बात करती है,
1: जी
0: आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है।
1: हाँ हाँ
0: इन सब चीज़ों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें।
1: जी जी
0: जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं,
1: जी जी
0: वर्षा ऋतु की।
1: जी
0: अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे? देखिए, वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमांद हो जाएगा,
1: जी
0: यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहे हैं कि भूख नहीं लग रही है,
1: जी जी
0: पहला लक्षण है।
1: हाँ
0: इसका
1: हाँ
0: मतलब अग्निमांद हो गया।
1: जी
0: दूसरा, वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है,
1: हाँ
0: या लूज मोशंस हो रहे हैं,
1: हाँ
0: या घबराहट हो रही है।
1: जी जी
0: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए? एक्सेसिव ह्यूमिडिटी,
1: हाँ
0: टेम्परेचर,
1: जी
0: इन सब से मिला जुला होने की वजह से
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: में परिवर्तन आए।
1: जी
0: अब आपको क्या करना है? आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें,
1: जी
0: खाना शरीर को कम दें,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा।
1: जी
0: जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लूज मोशन मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब

0: परिवर्तन आए।
1: जी
0: अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें,
1: जी
0: खाना शरीर को कम दें,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा।
1: जी
0: जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लूज मोशन मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब में कमी आ जाएगी।
1: जी
0: तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया
1: जी
0: तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
1: हाँ
0: फिर क्या खाना नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है,
1: जी
0: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे एक है, जल में घुले सत्तू को
1: जी
0: वर्षा ऋतु में निषेध कहा है,
1: अच्छा
0: क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है,
1: जी
0: तो इससे हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीज़ें, जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन, यानी
1: हाँ
0: वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो,
1: जी
0: जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयाँ हैं,
1: जी
0: इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें,
1: हाँ
0: ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य, जैसे
1: जी
0: खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की
1: जी
0: खिचड़ी खाएं,
1: जी
0: हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं,
1: जी
0: पत्तेदार सब्जियों को रहने दें। क्यों, वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो, तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको
1: जी
0: मना करते हैं,
1: जी
0: और ऋतुजन्य फल और
1: हाँ
0: ऋतुजन्य सब्जियों का सेवन करें। उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अब सुन लेते हैं एक
0: हाँ
1: गाना,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: ऋतु अनुसार
0: एक
1: ऋतु अनुसार

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। अगर आपके मन में भी आई अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल है तो उठाइए ना अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर जो है 0112342 1080 और 0112342 1082 और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070। अब अगला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे पूछ लेते हैं
2: जी।
1: कि आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली पर काफी जोर दिया जाता है
2: जी जी।
1: तो ये हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंचकर्म क्या है।
2: देखिए अगर त्रय स्तंभ की हम बात करें
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि जी जी। एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं
2: जी जी।
1: हेलो
3: हेलो
1: जी अपना नाम बताएं।
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और पित्त मेरी प्रवृत्ति है
1: जी,
2: जी।
3: तो पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी। मेरे दो मिथ्स हैं और दो ही मेरे सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा यह कि किसी शख्स की यदि इसकी पित्त प्रवृत्ति है तो क्या उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है? होती है। दूसरा मिथ कि जो लोग मैंने सुना है कि अगर माँ के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध पिए या बकरी भैंस का दूध पिए या डाबर चंद्रप्राश खाएं सोना चांदी बैजनाथ चंद्रप्राश खाएं तो इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये कहाँ तक सही है? और तीसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि पहले दवाएं वो प्रोड्यूस वो करते इन्वेंट वो करती है डॉक्टर के पास बाद में पहुंचती है वो, तो अगर वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करती है मार्केट में तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट दवाई खानी पूरा सेवन कर लेना चाहिए डॉक्टर से एडवाइस लेके वह दवाई खानी चाहिए? और चौथा अहम सवाल मेरा ये है कि ये खासतौर राखी मेरा मैम से मेरा सवाल है कि मुझे ना क्या है कि ये लीवर फैटी या अल्सर में से कोई प्रॉब्लम है और ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, श्वसन एलर्जी स्किन एलर्जी कुछ हद तक और निद्रा की प्रॉब्लम है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या ये भी इम्यूनिटी का ये पार्ट है क्या, और इसलिए मुझे घर बैठे बैठे क्या करना होगा? और इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ठंड में जाऊँ तो मेरी जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है नेक में और हिप्स में, और अगर गर्म वातावरण में रहूँ तो उससे मुझे निजात मिलती है पर मेरी पित्त प्रवृत्ति भी है, तो इस असमंजस में हूँ मैं उसे ढूंढ में, मैं क्या करूँ? प्लीज गाइड करे बड़ी मेहरबानी होगी
4: जी। राजेंद्र जी जैसा कि आपने कहा कि पित्त प्रकृति है आपकी, यानी कि आपकी जो है वो तीक्ष्ण अग्नि हम हो सकती है, और इसमें क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है वो

0: बहुत फास्ट होता है, और इसी में एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि TH1 और TH17 जो है वो टाइप के जो फिनोटाइप हैं वो IgE आपका CRP ये बड़ा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में यदि आपको प्रकृति पता हो तो आप उसको उससे होने वाले जो एक मतलब वो बाय नेचर आपको मिला है तो उसको आगे ना बढ़ें और वो अलग रोग ना पैदा करें। इसीलिए व्याधि के जो उत्पादक तत्व हैं उनको रोकते हुए खानपान बताया जाता है, और आपकी व्याधि क्षमत्व प्रतिबल जो है, जो सहज बल है, कालज बल है, ये हमारे अलग अलग बल हैं। मतलब सहज जो आपको खुद का मिला हुआ है, का जो माता पिता से आपको प्राप्त हुआ है, आपके इनबिल्ट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन से मिला हुआ है, और कालज में आपके जो ऋतु है, दिनचर्या है, आपका कैसा खान पान है, आप सही फॉलो कर रहे नियमावली आयुर्वेद की, तब आपको इससे तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपने जैसा कहा कि ये आपको जो तकलीफ़ है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है कि अब आपको वही झेलना है, आपको एक चिकित्सक को सलाह लेनी है, खुद मिलना है, और अपना पूरा एक डाइट प्लान, और आपके लिए मैं आपको बताऊँ जो पित्त प्रकृति है उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी हुई तो साइटोकाइनिन जो ये एक इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये फैक्टर, और ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है। तो नींद कितनी आप करते हैं, रात में इरिटेटेड रहते हैं या एसोसिएटेड और भी कोई बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
1: अब हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
2: मैम को भी नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते
2: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोही लोनी जिला का
1: जी। अपना सवाल पूछें
2: जी। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाता है जैसे, तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इसमें हम जैसे कि घरेलू उपाय में क्या लें, जैसे कि काजू बादाम वगैरह ले लेते हैं, ये चीज लें या ना लें, किशमिश वगैरह जैसे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: किस चीज की तकलीफ है, किस चीज के कारण वीकनेस ज्यादा हो जाती है आपको?
1: हेलो, आप अपना सवाल दोहरा दें।
3: किस चीज से आपको वीकनेस?
2: हेलो,
3: किस चीज से आपको वीकनेस हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो ओज धातु की क्षीणता की वजह से ये मसल लॉस होता है, मांसपेशी में जो उसके पोषक तत्व हैं उनका लॉस होता है, उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जो घरेलू उपाय कुछ हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और तमाम डायबिटीज़ में होने वाली समस्याओं को, जैसे आप त्रिफला का नित्य सेवन करें। त्रिफला दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो रात में एक चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में पानी से लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि होने से भी मधुमेह में आपको लाभ होगा। दूसरा, यदि त्रिफला को सुबह आप शहद से या पानी से लेंगे तो ये आपको रसायन के रूप में प्रयोग होगा जो आपकी व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, आंवला का मुरब्बा जो शहद में बना हो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप और सूखी हल्दी का पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको मधुमेह में लाभ होगा। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन काफ़ी आ रही है तो जामुन खाइए, जामुन के बाद उसकी गुठली निकाल लीजिए और उसे सुखा के उसको पाउडर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा इसमें डायबिटीज़ में। और ये सारी चीज़ें आपकी जब रोग को कम करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक बढ़ाती हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक पंचनिम चूर्ण भी आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एंटी डायबिटिक के साथ साथ स्किन की कोई प्रॉब्लम है वर्षा ऋतु में उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा

0: कुछ जो चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उसमें स्वर्ण का प्रयोग है, जैसे वसंत कुसुमाकर रस का हम लोग प्रयोग कराते हैं, जहाँ एक्सट्रीम डायबिटिक वीकनेस आती है वहाँ गोल्ड की प्रयोग करने की वजह से आपको तुरंत नर्वाइन वीकनेस में, जो नसों की कमज़ोरी बताते हैं, वहाँ पर बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, खान पान में थोड़ा मिठास का कम करके प्राकृतिक चीज़ें, सीज़न में उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करें तो आपको, आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी, आपके रोग में भी कमी आएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में,
0: जी जी,
1: तो बताएं कि ये पंचकर्म क्या है?
0: देखिए, पंचकर्म जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पांच विधाओं की खोज की गई, जो इसका जो सिद्धांत था कि शरीर को सबसे पास के रूट से गंदगी को या टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो आपके नाभि से ऊपर के हिस्से की टॉक्सिन्स निकालनी है अगर आपको, तो उल्टी करा के सबसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल उल्टी नहीं होती है, हम इसे वमन कर्म कहते हैं, जो पहला कर्म है। और कफ दोष, जो वात पित्त कफ है, इनमें जो प्रधान दोष, एक मेन दोष ऊर्ध्व भाग में ऊपर के हिस्से में कफ दोष रहता है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम स्नेह पान करा के उसको घी पिला के पेशेंट को तैयार करते हैं और फिर वमन कराते हैं। वमन की प्रक्रिया होने से आपका कफ और पित्त दोष, दो दोषों पे हम अच्छा प्रभाव लाते हैं और शरीर को अच्छा है। इसके बाद आता है विरेचन कर्म, यानी नाभि से नीचे के हिस्से में जहाँ पित्त दोष प्रमुखता से होता है और वात दोष, इन दोनों दोषों को नियंत्रण करने के लिए हम विरेचन कर्म करते हैं। तो दोनों का क्रम है, पहले आप वमन कराएं फिर विरेचन कराएं। दूसरे में नस्य कर्म कराते हैं, बस्ती चिकित्सा वात की शांति के लिए कराते हैं, और रक्त मोक्षण यानी ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार के पांच प्रोसीजर हम कराते हैं। अन्य पैरस प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करा सकते हैं, तो रोगी पे हम करा देते हैं।
1: जी जी, अब अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: नमस्ते।
2: मेरी उम्र है 70 साल की।
1: जी जी।
2: पहले तो बधाई आप लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो, आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज मिली है, क्या क्या चीजें हैं मैं ध्यान से सुनने से।
1: जी जी, शुक्रिया।
2: तीनों आप बधाई पात्र हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि कोई काढ़ा बना सकते हो आयुर्वेदिक उससे, जिससे कि
3: आपने आप अपना नाम क्या बताया?
2: रमेश
3: जी। रमेश जी, एक तो पहली बात है कि आप बीपी के हैं, तो कौन सा टाइप का बीपी है, कितने रेंज में है, ये परीक्षण एक बार एक चिकित्सक से जरूर दिखा लें। और ये बहुत गलत धारणा है कि बैठे बैठे कोई काढ़ा अगर हम बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हैं, आपको कौन से उसकी जरूरत?
2: जी डॉक्टर साहब, ऐसा था कि जब कोविड वगैरह हुआ था तो काढ़ा के बहुत बहुत रेसिपी आती थी,
3: ठीक है जी जी।
2: हाँ, तो उसको मेरे को काढ़ा का पहले उस टाइम मैं बनाया करता था, वो मैं भूल गया, मिसप्लेस हो गया। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा काढ़ा वाला जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो सकती है, बहुत इफेक्टिव था काढ़ा जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, तो आप उसमें हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
3: जी जी, वो गिलोय का जो है वो हम लोग काढ़ा देते थे, उसका रोल अलग था। गिलोय की मात्रा और किस तरह से बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रिसर्च से कंसर्न हूँ इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जो नॉर्मल आप लोग तोड़ करके कुछ भी, जैसे हम लोग जरूरत पड़ने पे हम विष को भी अमृत बना लेते हैं, है ना, उसके संस्कार करते हैं। संस्कार यानी उसकी वो चीज़ें जो पॉइजनस है उनको हटा के कितनी मात्रा में, कितनी डोज में, किसके साथ, कब, खाने के पहले बाद में, ये सारी व्यवस्था एक चिकित्सक दवाई जब यूज़ करता है ना तो इसका विचार करता है। और अगर हमने, मैंने ये बहुत सारे प्रयोग देखे थे, जब काढ़े के बताया गया था तो लोगों ने सारी गिलोय साफ़ कर दी और ले लेकर के उसमें कई चीज़ें उनको रिएक्शन भी हुई हैं। इसी तरह जैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुलसी दल, दो तुलसी दल भी जो है सुबह अगर आपने पानी के साथ में उसको निगला तो भी अच्छा है, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाते, वो भी एक दिक्कत है, लोग बोलते चबाने, उससे भी दांतों का आपका

0: खराब होता है, उसके जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो खराब कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, आपकी उम्र 70 साल की है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा की कितनी मात्रा लेना है, क्योंकि अश्वगंधा कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, लेकिन कई बार बीपी को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर कोई भी औषध ले रहे हैं, देखिए खाना और औषध में यही फ़र्क है कि खाना आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लोगे तो वो औषध बन जाएगा, और औषध जो है वो अपने हिसाब से लोगे तो वो नुकसानकारक जो है वो कहीं दवाई आपको और नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मेरी सलाह मानिए, एक चिकित्सक को दिखाना बनता है और उनसे एक बार अपना चार्ट बनवा लें और ज़रूर लें, लेकिन अश्वगंधा कितनी मात्रा में दूध के साथ में आप ले सकते हैं। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया सुधीर सिंह का जो कुतुबगढ़ से आया है। वो पूछ रहे हैं कि कुसुमाकर रस गोल्ड वाला कितने दिन तक खा सकते हैं, और ये मलाई के साथ ठीक रहेगा या शहद के साथ?
2: देखिए, वसंत कुसुमाकर रस जो है अपने चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें स्वर्ण जैसी औषधि होती है, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रयोग कराते हैं। शरीर में जितने समय में इसका लाभ आ जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए उतने समय के लिए ही प्रयोग कराते हैं, लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग और उपयोग करें और इसका लाभ ले सकते हैं।
1: और हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो,
3: मैडम जी नमस्कार,
1: नमस्ते।
3: और डॉक्टर साहब को भी दोनों को नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नमस्कार
3: जी। मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा गांव कुकनिया, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
2: बताइए।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं 2002 से दिमाग की दवाइयाँ खाता हूँ,
2: जी
3: और
2: जी।
3: मेरा छोटा भाई है वो 2009 से,
2: जी।
3: उसको सिजोफ्रेनिया और मेरे को ओसीडी है,
2: ठीक।
3: ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड में हमारा फैटी लीवर आया दोनों का, मेरा ग्रेड 2 है, भाई का ग्रेड 1 है। तो
2: जी
3: आप ये बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड पे क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकती हैं सर कहीं से, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से भी
2: ये तो
3: आयुर्वेदिक
2: देखिए,
3: दवाइयाँ आयुष्मान कार्ड
2: हाँ
3: पे?
2: देखिए, ये जो जहाँ भी ये स्कीम लागू है वहाँ क्या व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोकल स्थानीय स्तर पे इसको पता करें, ठीक है। दूसरी, जहाँ देखिए दो समस्या है आपकी, एक लीवर की समस्या है जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ये दोनों भाइयों का पूरी तरह ठीक हो सकता है। और जो आपने अपनी तकलीफ़ बताई, ये तकलीफ़ थोड़ा कठिन है चिकित्सा में, लेकिन अगर आप सही चिकित्सक के मार्गदर्शक में आप अपनी औषधियों का उपयोग करते हैं, आयुर्वेदिक और पंचकर्म का उपयोग कर प्रयोग करते हैं, तो मानस रोगों में लक्षणों को काफ़ी कम किया जा सकता है और आपकी स्थिति को बेहतर सुधारा जा सकता है। बाकी पूरी बात तो आपको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप यहाँ पे त्रिकटू एक होता है हमारा, सौंठ पीपल और मिर्च के से मिली हुई दवाई एक होती है, आपको मिल जाएगी। वो आप एक चुटकी खाना खाने के पहले ले सकते हैं, और दोनों भाई ले सकते हैं, आप ओसीडी वाले और आप जो दूसरे भाई हैं उन उनको भी, क्योंकि मेडिसिन जब बहुत दिन तक आप लोग खाते हैं तो उससे लीवर कहीं ना कहीं कुछ उसमें डैमेज होता है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव जितने भी दवाइयां हैं वो आयुर्वेद में बहुत बेहतर हैं। आप किसी चिकित्सक के सलाह से ये आप अपने लीवर को भी ठीक कर सकते हैं जी।
1: डॉक्टर साहब, एक नींद की समस्या,
2: जी
1: अभी स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर बात होनी चाहिए,
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लंबी बात होनी चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं जैसा,
2: बिल्कुल।
1: तो आयुर्वेद में इससे निदान पाने का और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का और मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम?
2: देखिए, जो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए ना
1: जी
2: स्वस्थ रहने के,
1: जी
2: उनमें आहार,
1: जी
2: निद्रा, ब्रह्मचर्य,
1: जी
2: यानी निद्रा भी एक इतना बड़ा फैक्टर है।
1: हाँ
2: अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो देखिए उस व्यक्ति की भूख डिस्टर्ब होगी और
1: जी
2: नींद डिस्टर्ब होगी,
1: जी
2: ठीक है। यदि एक व्यक्ति को सोने को सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होगा, जिसमें मानसिक लक्षण आएंगे। तो इन सभी

0: समस्याओं में और नींद को सही से लाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल, सरल, सुरक्षित औषधियां हैं। कुछ तो आपके आसपास भी उपलब्ध हो सकती हैं। इनमें अगर कोई औषध भी नहीं खानी है तो आप पंचकर्म में शिरोधारा का उपयोग करें।
1: जी
0: शिरोधारा से बिना औषध के आपको निद्रा आ जाएगी। दूसरी है नस्यकर्म। नस्यकर्म जिसमें कि आपके नाक में औषधीय तेलों का प्रयोग करके आपको नींद को हम लाते हैं।
1: जी
0: तीसरा है कर्णपूरण, यानी अगर आप कान में तेल डालेंगे, क्योंकि कान वात का स्थान है और वात जो है निद्रा को डिस्टर्ब करने में एक प्रमुख कारण बन जाता है, तो उससे भी हमारी वात की शांति से हमें निद्रा अच्छी आती है। तीसरा है पादाभ्यंग, यानी अपने पैरों की मालिश करना, तलवों की। यदि आप सोने से पहले अपने तलवों की मालिश करते हैं, इससे भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको नींद अच्छी आती है। तो इन सब प्रक्रियाओं से बिना औषध के भी नींद ला सकते हैं, और अगर आपको औषध की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में वो प्रयोग
1: हाँ
0: करें।
1: जी हाँ, इसके साथ में प्राणायाम, ध्यान
0: जी,
1: आप ये भी अपना सकते हैं,
0: हाँ
1: क्योंकि सकारात्मक भावनाएं जो हैं
2: जी,
1: वो काफ़ी हद तक आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्टअप करती हैं,
0: बिल्कुल
1: और जिसके कारण आपके जो नर्वाइन जो है वो एक जो कॉर्टिसल लेवल स्ट्रेस के थ्रू आता है
2: जी,
1: वो भी कम हो जाता है, और नींद पूरी करेंगे तो साइटोकाइनिन जो आपके लिए ज़रूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो
2: जी
1: भी पर्याप्त मिलता है, और एक तो देसी उपाय दादी नानी के ज़माने से किया जा रहा है
2: जी
1: भाई,
2: जी
1: और वो है कि आप एक गिलास दूध,
2: अच्छा
1: गर्म दूध रात
2: जी,
1: में पीना चाहिए, यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ, और यदि डायबिटिक है तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, उसमें कई लोग कोई मुनक्के डालते हैं कुछ, तो ये एक प्रक्रिया जो है दूध पीने वाली है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि पादाभ्यंग रात को सोने के पहले यदि किया जाए तो और
2: जी
1: बेहतर, और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग टाइम कम करिए, और वो भी आप लोगों को सोने के पहले ये मोबाइल है, टीवी है, इससे कम से कम आधे पौन घंटे या 1 घंटे दूर रहें, और फिर देखिए थोड़ा खाने के बाद में वॉक जरूर करें, खाने के बाद तुरंत लेट न जाए, छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो नियमावली है और पूरी लिस्ट है, आप किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ तो फॉलो करिए।
2: जी। तो आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, और हमारे दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम जानकारियाँ दी। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम नमो धन्वंतराय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय।
0: धन्यवाद।
2: आशा करते हैं कि आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है health@aardelhi.com।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 106 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सबका योगदान।

0: स्मृता, भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी।
1: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए
0: जी। ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें, तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा जो भी ऑपरेशन हुआ
1: जी। यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक बहुत
1: बता जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे, और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था, लेकिन मेहनत बोला जाता है करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है, और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही, जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी।
0: इसमें जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर।

0: ये नहीं होता ऑपरेशन तो, इस
1: जी
0: ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई
1: क्या बात है सर। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: जी
0: बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको
1: जी
0: बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध
1: जी
0: गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी
0: जी,
1: तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहाँ पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं
1: जी
0: चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ
1: जी
0: भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है
1: बिल्कुल।
0: उसमें।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे,
1: जी
0: उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक जी जी जी
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत ज़बरदस्त
1: जी
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
1: सर, हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है
1: जी
0: उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें,
0: खात्मा करें।
1: जी लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
1: क्या बात
0: नाम
1: है
0: का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी
0: जी जी
1: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए
0: जी। एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे,
1: अच्छा।
0: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
1: जी।
0: जी
1: और दो बार आपको मिला है,
0: दो बार गैलेंट्री,
1: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
0: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और
0: जी,
1: हाँ सब मिलकर
0: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड
1: ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा।
1: में ज्वाइन किया जी।
0: जी तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के

0: ऐसे ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ। वहाँ
1: अच्छा
0: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा
0: हाँ, वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर, आपकी जो, जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट
0: हाँ,
1: जी?
0: इंडो

0: किए थे हमारे बटालियन एसएसबी, बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी, जी
1: जी,
0: जीडी मतलब जनरल
1: तो
0: ड्यूटी।
1: ये
0: हाँ
1: जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए।
1: जी
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का, 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद
1: जी
0: प्रमोशन मेरा हुआ। जी
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोन बारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
0: सोलोनावाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ,
1: अच्छा,
0: उसके
1: बेसिक
0: बाद
1: ट्रेनिंग।
0: हाँ उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन
0: हाँ,
1: असम में आपने
0: ट्वेंटी
1: शुरुआत।
0: थर्ड
1: अच्छा
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से
1: अच्छा
0: शुरुआत हुआ। जी
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई
1: थर्टी
0: गांव
1: फर्स्ट
0: में हुआ।
1: बटालियन
0: जी जी जी जी
1: अच्छा,
0: जी
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ, 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफ़र 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
1: अच्छा
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: हुई है।
1: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है
1: जी
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता
1: जी
0: है।
1: जैसे
0: जी
1: आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, 50 केस का। उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ, लेकिन
1: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद करते
1: अच्छा,
0: हैं। जी
1: तो
0: हाँ
1: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
0: जी
1: जी तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
0: जी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
1: जी
0: जी जी जी
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजीज बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो
1: जी
0: सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
1: जी
0: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: हाँ, जो
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो
1: जी मिल जाए।
0: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है,
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है और ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो
1: जी,
0: आप
1: तो
0: अप्लाई
1: ग्रेजुएशन
0: कर
1: कम
0: सकते
1: से
0: हैं।
1: कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
1: जी
0: जी
1: सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ओवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट

0: obeisances to them myself. Shankar Lodhe from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi. Se. Jai Hind, Jai Bharat Mata Ki, Jai Vande Mataram. I hope my message will forward to respected sir. Yes, of course. Aapka message humne Inspector Rituraj ji ko suna diya hai. To sir, aap kuch kehna chahenge is message ke jawab mein? Ye bahut aapki tareef kar rahe hain aur aapko aapko greet bhi kar rahe hain. Aapke missions ke liye bhi aur aapko bahut dhanyawad kar rahe hain desh seva ke liye.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं. जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिल करके ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज़ सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को. आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें.
1: फोर्स से ही मैंने जी.
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी.
0: अच्छा.
1: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं.
0: अच्छा.
1: खाना. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है.
0: ओके.
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज. और उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल.
0: अच्छा.
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी.
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी.
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी. जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा.
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे.
1: इस टाइप के ड्रिल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे उसमें आपको एकदम.
0: अच्छा.
1: हाँ.
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है साथ में, हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा. यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया. और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल.
1: जी. हाँ. तो हो जाता है उसमें.
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें.
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का.

0: अच्छा
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा,
1: अचानक अचानक सब चीज़ होता है।
0: आप पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके,
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल ड्रिल
1: ड्रिल ड्रिल, हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
1: अगर
0: जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
0: जी
1: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक
1: हाँ,
0: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
1: कमजोर
0: पूरी
1: पड़,
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
1: हाँ, तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
0: मोटिवेटेड
1: का।
0: रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप
0: जी
1: में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं
0: जी
1: भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी
1: जी।
0: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डरों
0: अच्छा
1: पर करना है जी, उसके उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है?
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: जी
0: सर ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मज़ा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
0: जी
1: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मज़ा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए जी।
0: सर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: राजवीर का यहाँ पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूँ, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से।

0: और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस
1: जो
0: के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस एसोसिएशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।

0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच सकता है तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो, दिल से दिल तक।

0: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है ते तुसी सुन रहे हो अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे अरुषी।
1: मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे खुशी। ते अरुषी अज किन्नी सारी असीं गल्लां करनी आ अपने लिसनर्स दे नाल। शो बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है तुहाडे सारयां दे लई, क्योंकि असी अज वर्ड एक्सप्रैस विच एक नवां शब्द सीखांगे। उस तो बाद डिस्कशन होएगा जिदे विच असी तुहानू करियर दे बारे कुछ चीज़ां दसांगे जिदे नाल तुहानू बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है।
0: अज ना मतलब अज एक ना बहुत खास दिन भी सैलीब्रेट किया जाता है, या अज दी जिहड़ी डेट है ना बहुत खास तरीके दे नाल याद की जाती है। मैनूं एवें लगता है कि जिहड़े साडे डिस्कशन दा टॉपिक भी रहने वाला ना वह इस डे दे नाल रिलेटेड ही रहेगा।
1: उस तो बाद दोस्तों टैकटॉक भी होएगा जिहदे विच साइंस दे नाल रिलेटेड असी गल्लां करनी है। तो तुसी किते नहीं जाना, पूरा शो इंजॉय करना है साडे नाल।
0: खुशी जी आपां अज दी गल करिए तां अज दी जिहड़ी डेट है ना, अज दी डेट ना मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीकियां दे नाल याद की जाती है। बहुत अलग अलग मतलब पूरे वर्ल्ड दे विच ना बहुत अलग अलग डेज दे अकॉर्डिंग इस डेट नू सैलीब्रेट भी किया जाता है ते इनू याद भी किया जाता है।
1: अच्छा, ते ओ किदा किता जांदा यार?
0: देखो सब तो पहले तो आप जो गल करिए ना कि अज दा जिहड़ा डे है आप कहने ना कि हमेशा जिहड़े साडे आप कहने कि साडी जिहड़ी स्पीच है जो भी आप बोलते हैं अपना सारयां नू फ्रीडम हुंदी है कि आप कुछ भी कह रहे हैं तो सब नू फ्रीडम दित्ती हुंदी है, किसी नू आप रोक नहीं सकते कुछ भी कहन वास्ते। तो अज दा दिन उसदे नाल रिलेटेड है, अज है फ्रीडम फ्रॉम फ्री ऑफ स्पीकिंग डे।
1: मतलब कि असी कुछ भी बोलना है तो ओदी सानू पूरी आजादी दी जाती है। जे पंजाबी च असी कहिए कि तुसी कुछ भी बोलना है कुछ भी कहना है ओदी तुहानू आजादी दी जावे, ओही है फ्रीडम फ्रॉम फेयर ऑफ स्पीकिंग।
0: बिल्कुल, जे आपां गल करिए ना कि कोई भी है कि अगर जिन्हों भी किसी नूं डर है, बेसिकली डर सारे नूं हुंदा पब्लिक स्पीकिंग दा। कोई भी अपने अपने घर च बह के या फिर अपने रिश्तेदारां च बैठ के अपनी फैमिली च बैठ के आपां जिहड़े सारे लोकां दे नाल जिन्हां दे विच वी आपां बैठदे आ उहनां नाल उहनां विच बह के ना आपां नूं कोई डर नहीं हुंदा कि आपां की कह रहे हैं की नहीं कह रहे। पर जदों पब्लिक स्पीकिंग दी गल आउंदी है ना, जदों अपने विचार अपने थॉट्स आपां सारयां दे नाल सांझे करने होण शेयर करने होण, उदों जो फीयर ऑफ स्पीकिंग है ना सब दे मन च आंदा ही आंदा है। तो मैनूं एवें लगता है कि इस चीज़ नूं बहुत जल्दी ओवरकम करना चाहिए। तो जिवें ही आपां बोलना शुरू करांगे, जिवें हौली हौली आपां गल्लां करनियां शुरू करांगे, तो आपां नूं पता लगेगा कि ये कोई बहुत वड्डी चीज़ नहीं है जो आपां ओवरकम नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस दे नाल नाल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि खेड पत्रकार दिवस भी मनाया जा रहा अज दे दिन। दोस्तों खेड पत्रकार जिन्हां नूं बहुत मतलब असी स्पैशल नहीं समझदे या फिर कई बार उन्हां नूं ओह इंपोर्टेंस नहीं दित्ती जांदी जिहड़ी कि उन्हां नूं मिलनी चाहीदी है। क्योंकि अगर कोई भी खिडारी जितदा है, रिकॉर्ड बनांदा है या कोई इतिहासिक मुकाबला जितदा है, तो खेड पत्रकारी ने जिहड़ी कि वड्डी भूमिका उस विच निभांदे ने। उन्हां दे सारे स्कोर नूं याद करदे ने, इकट्ठा करदे ने, हर उन्हां दी जित नूं स्पैशल बना देंदे ने। उन्हां दा संघर्ष, उन्हां दी प्रेरणा दी कहानी जिहड़ी है उस ओही कहानी नूं तुहाडे सारे नाल सांझा करन लई अज दा दिन मनाया जांदा है।
0: बिल्कुल, जे आपां इहदे इतिहास की गल करिए इन्होंने जो भी मेहनत करनी होंदी है या जिवें भी जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना स्पोर्ट्स की फील्ड दे विच, मैनूं एवें लगदा कि जिन्हें भी पत्रकार इस चीज़ दे विच आंदे ने या इस फील्ड दे विच आंदे ने ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ नूं आपां कहिंदे आ कि बहुत ज़्यादा सराहना दित्ती जांदी है, इहनूं बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया जांदा है। अगर आपां इहदे इतिहास की गल करिए तां इह दिन 1994 तों मनाया जाना शुरू किया गया सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस

0: हिंदी या था, हिंदी दी
1: जी
0: वो मेरी
1: भाषा दी
0: बहुत,
1: कमांड
0: हाँ
1: होंदी
0: भाषा
1: सी।
0: दी कमांड होनी बहुत जरूरी सी। मैं कई बार हैरान हो जाती सी पहला कि असी जदों बुलाना एप्लीकेशन आ तो पंजाबी एप्लीकेशन नहीं कोई लिख पाते सी। मतलब ये मेरे लिए बड़ा एक शौक हुंदा सी कि असी पढ़ के इत्थे पहुँच रहे हैं तो कोई एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे। पर हुण जो डिजिटल हो गया उदेच मैं की देखती हाँ कि साड़ी जड़ा यूथ आ वो काफ़ी
1: बिल्कुल
0: कॉन्फिडेंस है उदेच और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उन्हों लिखन और वो नालों उन्होंने बोलना आंदा, उन्हों की एक जड़ी कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज वो बहुत कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन है। तो ईवन जदों असी भी डिजिटल कोई रखना होंदा तो असी उदा टेस्ट लेंदे हैं और जेड़ा तानू प्रभावित कर गया ताडे उस चीज़ नू वो जस्टिफिकेशन हो जाती है। तो यदा फायदा एक जो मैनू लगता है कि जेड़े बच्चे अपने आप नू पेश नहीं कर पाते सी क्योंकि नौकरियां घट हुंदियां, किसी
1: जी
0: ने इंजीनियरिंग कर ली एमबी कर रही वो उस दौर चले गए, जिन्हों हुन शौक आ कि मैं बोलना मैं रिपोर्टिंग करा माइक लैके जाके एंकरिंग करा, ये बहुत अच्छा है उन्हां लई प्रोस्पेक्ट क्योंकि यूथ ये वाल बहुत अट्रैक्ट होंगे। और मैं देखती हाँ कि अजकल दे जदों तुसी एनुअल फंक्शन यूथ फेस्टिवल्स देखो साढ़े वेले बहुत डर डर के पार्ट लेंदे सी, मसा 3 बच्चे उही लई जाने पार्ट,
1: जी
0: हुन बच्चियां च बहुत कॉन्फिडेंस है और ये डिजिटल उन्हां लई एक बहुत अच्छा स्कोप है कि वो अपने हुनर नू पेश कर सकते हैं।
1: ते शीतल जी तुसी गल कीती कि हुन असी कह रहे हैं कि युग बदल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए हैं, पर
0: जी
1: मैंने लगता है कि वो जी ट्रेडिशनल नॉलेज है जी, वो डिग्रीज असी कहने हैं कि मास्टर्स इन जर्नलिज्म या बैचलर्स इन जर्नलिज्म, ये डिग्रीज होना ये जरूरी हैगी कि नहीं?
0: कितना ना किते मैनू लगता है कि शायद बेसिक जड़ी नॉलेज है जिस खेत्र दे विच तुसी जाना है, जिवें हुण मैडम उन्होंने क्रेडिबिलिटी की गल की, जेकर डिग्री नहीं होएगी तो तुहानू एथिक्स की समझ नहीं होएगी।
1: और ठीक कह रहे हैं शिवम, ये एक होर चीज़ आ जदों तुसी पढ़ के डिग्री लै ली ना तो तुसी ताड़ा ना जिहड़ा वो मन का दायरा जिन्हों कहने असी आउटलुक बेटर हो जाती है।
0: जी
1: एक बच्चे ने 12वीं की और एक बच्चे ने ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन की है उस फर्क आ जाता, तो तुहानू एक डिग्री होनी बहुत जरूरी आ। तुसी बेसिक जो चीज़ा पढ़ते हैं वो तुसी एक बार अपनी थ्योरी पढ़ ली बस तो जी
0: ताड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ही आ, पर डिग्री बहुत जरूरी है। कल नू तुसी किते होर जॉब जाना पए जिथे कि आ चीज़ा नहीं होंदियां उथे डिग्री बहुत मैटर करती है।
1: तो मतलब वो डिग्री दे नाल बेस बनाना एक बारी जरूरी है साड़े यूथ दे लई ताकि अगे जाके वो इस फील्ड दे विच होर वधिया
0: होर
1: कर
0: वधिया
1: सकन।
0: कर सकन, बिल्कुल ठीक
1: जी
0: मैम। ये नाल ही नाल एक सवाल हो रहा, फ्रीलांस जर्नलिज्म वो अज के समय से किन्नी कु इंपॉर्टेंट है तुहानू लगती है?
1: उहदे च शीतल हुण जिदा तुसी हो तुहानू पता है एक बींग लेडी ताड़ियाँ थोड़ियाँ लिमिटेशन है, तुहानू घर भी देखना है, तुहानू बच्चे भी देखने हैं, अगे उन्हां नू भी देखना है। जिहड़ी फिक्स जॉब है वह भी बहुत जरूरी हुंदी है, उहदे नाल ताड़ी एक बन जाती है कि हाँ मैं सेफ हाँ। पर जिहड़े जिन्हां लोगों के कई बार घर नहीं हालात उदा के होंगे बुजुर्ग होंगे ने नहीं वो देख पाते तो जी
0: उहदे लई कुछ घंटे लई जाके करना वो काम बहुत बेहतर रहिंदा। उहदे नाल फ्रीलैंसिंग ना उन्हां दा शौक भी पूरा हो गया, उन्होंने पैसे भी कमा लए और उन्होंने ये भी नहीं लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाई अपने प्रोफेशन नाल जस्टिस या मैं काम नहीं कर पाई मेरा वो भी शौक पूरा होया। अगे अगे जदों हालात थोड़े स्टेबल हो जाते हैं तो बंदा फिक्स जॉब भी कर लेंदे आ।
1: की स्टूडेंट लाइफ दे लई भी ये ठीक है कि पढ़ाई दे नाल नाल तुसी किसी अदारे दे नाल जुड़ के?
0: हाँ बिल्कुल, मैं तो कहनी हूँ करना चाहिए क्योंकि तुसी वो एक्सपीरियंस जिहड़ा ना प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाल नाल तुहानू स्टूडेंट ते तुसी अपनी साडे कोल कई ऐसे सिगे
1: जी
0: एंकरस जिहड़े अपनी करदे आ जर्नलिज्म पूरी कीती नाल वो साडे जॉब कर रहे सी, फिर असी उन्हां नू फुल सपोर्ट करदे हां कि तुसी जाओ अपना पेपर दिओ पेपरां छुट्टियां लो ताकि वो चीज़ भी अपनी पूरी कर सकन अपनी इधर आ भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लै सकन।
1: ते मैम जदों ये जर्नलिज्म प्रिंट तो पिक्सल ते आ गया ते कीड़ियां नवी अपॉर्चुनिटीज यूथ लिए आके उभर गई हैं कि यूथ ओदे विच पार्टिसिपेट करे ते अपनी एक पहचान बनावे जर्नलिज्म दे विच?
0: एक शिवम जिदा मैं पहला क्या जिहड़ी ये जर्नलिज्म है तुसी पिक्सल कह रहे हो, हुण जिदा कोई न्यूज़ पढ़ते ने कोई प्रोग्राम करते ने ते ताड़े सामने सब कुछ चल रहा हुंदा
1: जी
0: तां ताड़ी सिर्फ प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज इदा दी होनी चाहिए है कि तुसी 5 मिनट पहला प्रोग्राम तो भी वो चीज़ पढ़ो तो तुसी वो बोल
1: बोल
0: सकते हो,
1: सको
0: तो ये फायदा यूथ नू हो जाता है जिन्हों नहीं भी नॉलेज हुंदी है कुछ हो रहा है तो वो सामने वो चल जाती है न्यूज़ उन्होंने प्रेजेंट कर देंगे ने। सो ये यूथ लई बहुत अच्छा आ रहा है प्रोफेशन जिहड़ा
1: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪਿਕਸਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ।
0: ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ

0: नहीं नहीं तू ही बोल लो पहला। नहीं नहीं बोलो।
1: ओ या कमाल करी जाना या तू गुस्सा कर देना कैसियां गलत कर दो। मैं ओपनिंग कर दे नहीं जाए तू ज्यादा बोल रहा था।
0: नहीं नहीं चाचा जी तुम दो मिनट रुको ओपनिंग करने मैं है ना
1: हाँ कर फिर म्यूजिक ला जरा दो स्टेप ला ला मैं।

0: वेल दोस्तों 102.7 मेगा हर्ट्स ते एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है ते अपना फेवरेट शो तुसी जेड़ा सुन रहे हो जी दा नाम है लव यू जिंदगी। शो तुसी सुन रहे हो तो इस लव यू जिंदगी वाले शो दे विच असी लव यू वाली गल्लां करांगे, यानी कि अपनी जिंदगी नू प्यार करन वाली गल्लां बातां अज असी करांगे।
1: अले सारियां गल्लां तू ही करी जा भरा, सानू ना करन दे।
0: हां जी हां जी चाचा जी, तुहानू भी मौका मिलेगा, स्वीट नू भी मौका मिलेगा ते बांटी भाई नू भी मौका मिलेगा। केड़ी गल आ उस्ताद जी, लाओ जी फिर शो आपां शुरू करदे आ। अज दी जिहड़ी आपां तुहानू स्टोरी जिहड़ी सुनाउणी है बड़ी मजेदार, ते लो जी ये स्टोरी हैगी बड़ी मज़ेदार। एक पिंड विच एक बजुर्ग किसान रहिंदा सी, ते उहदे कोल एक गधा सी, ते गधा हर वेले मुस्कुराउंदा जिहा लगदा हुंदा सीगा। ते पिंड वाले मजाक करदे हुंदे सी, कहिंदे गधा इन्ना खुश क्यों रहिंदा है, इहनूं तां काम ही काम करदा, इह मतलब इहनूं तां काम ही बड़े पैंदे ने। एक दिन किसान गधे उत्ते दो बोरियां लद के मंडी वल चल पिया। राह विच एक बोरी फट गई ते अद्धा समान डिग गया। पिंड वाले हसन लग पए, अज तां भाई नुकसान हो गया, पर गधा पहलां नालों भी तेज तुरन लग पिया। किसी ने पूछा, ओए ओ तेरा बोझ घट हो गया इस करके खुश है? किसान हस के कहिंदा, ओ नहीं जी, ओ ये तां हर रोज़ इंजी तुरदा है, ओ इहनूं तां बीते बोझ दा दुख हुंदा है, इहनूं तां बीते बोझ दा दुख हुंदा ना आउण वाले बोझ दी चिंता, इह सिर्फ अज दा राह तय करदा है। सारे कुछ पल ही चुप ही हो गए। किसान फिर मुस्कुरा के कहिंदा, असीं इंसान भी कमाल दे आ, कल दी टेंशन परसों दी फिकर ते 10 साल पुरानियां गल्लां सिर ते चुक के फिरदे ही रहने आ। फिर कहिंदे आ कि जिंदगी भारी है। एक बुजुर्ग ने हसदे हुए कहा, लगता है अज गधा नहीं सानू अकल दे के, अज तां गधे ने सानू अकल दे दित्ती आ, सिख्या। जिंदगी विच हासा ना छड्डो, जो बीत गया उसका बोझ ना ढोवो, अज नू दिलों जियो, क्योंकि मुस्कुराउंदा चेहरा हर औखा राह आसान कर दिंदा है। तो लाओ जी अज की इस कहानी दे विच सानू गधा जी सानू जिहड़ी आ ओह एक सिक्ख्या दे गए ने, कि वैसे वाकई ना गल सही आ, किसी ने सही कहा कि सब तो वड्डी स्पीशीज जिहड़ी आ ना जानवरां दी ओह इंसान ही आ, पर मतलब जिहदा ज़्यादा दिमाग हुंदा ना मैनू लगदा वह ज़्यादा दुखी रहिंदा। तो गधे ने अज सानू इह सिखा दिता, गधे जी मैं कहांगा, उन्होंने सानू इह सिखाया कि भाई प्रेजेंट में जियो। तो लो जी गदा जी भी कुछ कहना चाहते हैं सानू, आपा सुननी सुनी लई। हाँ जी गदा जी की कहना तुहाडा?
1: ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਗਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ।
2: ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜੇ।
0: ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
1: ਭਾਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
2: ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ,
1: ਉਹ ਸਵੀਟੂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ।
2: ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
1: ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
2: ਹੈਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

0: वेल वेल दोस्तों, एफएम बैंडिंग 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते अपना फेवरेट शो तुसी सुन रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। एक बार फिर तो तुहाडा दिलों स्वागत करदे हां, मुड़ तो तुहाडा निग्गा जी आया। आओ जी एक बार फिर जुड़दे हां अपने प्यारे प्रोग्राम नाल। तुसी सुन रहे हो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते अपना फेवरेट शो जिहड़ा तुहाडा चल ही रहा जी लव यू जिंदगी। ते लो जी मैं कहा जी सो सरोतियो एक छोटे जे विराम तो बाद वैसे ना ताड़े तो दूर रहा नहीं जाता है ना। तो मैं कहा जी शो शुरू हो गया तो साढ़े चाचा जी भी चाह चू पी के आ गए ने, साढ़े मोंटू होनी तो स्वीटू होनी भी चाह चू पी के आ गए ने। तो गल चलती पी ही चाचा जी अं घेरते हैं कि तुम कुड़ियों को क्या किदा तुम कुछ
1: ओ यार कैसिया गल करी जाना यार जोरावर मैं कुछ की मैं कह के दस बचना मैं कुड़ियों की कहता।
2: हाई चाचा जी मैं सुनिया क्या सगा कि बब्बिया तो बच के रहो तो बब्बा बीबी भी होंगे ना तो बीबिया।
1: और पुत्र है तुम मैं अवे क्यों कुटापा लवाना तीन वेखो बीबिया तो पहला तो अभी चाची ने मेरा कुटापा ला देना यार मैं बख्शो यार मैं बड़ा डर लगता ताजी चाची तो पुलिस यार डोंट लाइक दिस पुलिस।
0: वैल वैल चाचा जी डरन वाली कोई गल नहीं, आप बस तुहाड़े नाल मखौल ही करते पर एक बार तुहानू असीं कह दिए सारे जिहड़े साडे स्रोते सानू सुन रहे ने वाकई सानू ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए है ते सानू ध्यान देना चाहिए है कि बच्चे बजुर्ग जिहड़े साडे जानवर ने या कोई भी जिहड़ा शख्स तुहानू लगे कि वह अनप्रोफेसनली तरीके दे नाल वो कोई वहीकल चला रहा तो उन्हां तों थोड़ी जी दूरी बना के रख लीती जाए। क्यों चाचा जी ठीक है?
1: आहो आहो ठीक है यार। ओ यार गाना ही सुना दे बाबा चिर होया गाना नहीं सुनाया।
0: तो लाओ जी चाचा जी सा तुहानू की गाना सुनाना ही सारे नू गाना सुना देने केड़ी गल है।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: 난게 혼자서 하시대니
1: वेल दोस्तों क्या बात है आंदे ही मेरा स्वागत है इन्होंने वाह वाह वधिया कर दिता चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू भाजी स्वीटू जी ताडा भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह नजारे ही आ गया बहुत थैंक यू मैं कह ताडा की कर सकदे
0: ओ चल चल मामा शो कर चाह दे पैसे देने नी ते मुहावरा मैं तो फिर ना सुनी कोई मैं तो बजे बहुत मुहावरे पुछदा मैं तू
1: हाई मैं तू भी मुहावरा
0: ओ चल तू चपका जा नाम दा स्वीटू हैगा तू खटा जाइया खटा मैनू कहना ते खटा तू खुद होया पिया वा क्या बात है नजारे फुल ओ किते चाचे दियां गल्लां ते वी हसला पिया मैनू तां खुशी बड़ी होंदी है
1: वैल दोस्तों इन्हां दा ते हालात इंदा दे रहने आ चाह पी के ते आपस ही लड़ पे जद के इन्हां नूं इह नहीं पता कि चाह मेरे वल्लों सीगी सो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसीं अपना शो जिहड़ा इंजॉय कर रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी ते दोस्तों वैसे ना तुहाडे जिहड़ी जिन्ने भी तुहाडे सुनेहे हुंदे ने असीं ना तुहाडे पढ़दे रहिंदे आ सुनेहे ते बड़े खूबसूरत सुनेहे ते उहनां सारिआं नूं कलैक्ट करके असीं जदों शो बणाउंदे आ ना ते बड़ा ही मज़ा आउंदा तुहाडे नाल गल्लां बातां करके समां इजाजत नहीं दे रिहा पर सानूं जाणा पएगा क्योंकि अगले आर जे साडे कोल हरीश जी पहुँच चुके ने सो अगला शो कुछ कु पलां दे विच तुहाडे दरमियान असीं पेश करांगे सो अपने हुण इस दोस्त नूं मेज़बान दोस्त नूं दिओ इजाजत आर जे जोरावर सिंह साडे चाचा जी मोंटू भाजी ते ना भुलण वाले साडे स्वीटू जी ओकी बॉय सो सत श्री अकाल आदाब नमस्कार एक बारी फिर तो आपां मिलांगे बहुत जल्द स्टे ट्यून्ड

नमस्कार, पेश है एफएम न्यूज हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नवी दिल्ली च गलबात दौरान कई खेतरां च दवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा कीती। रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब दा दौरा करनगे।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने जनाब तुहाडे हरीश नाल तुहाडे और आगाज हो चुका जी साडे प्रोग्राम दा। हाँ जी जनाब की हाल चाल ने तुहाडे साडी महफिल स्टार्ट हो चुकी है, आगाज हो चुका है और मैं नाल हां तुहाडे, मतलब कि 11 बजे तक मैं ते तुसी तुसी ते मैं ये साडे प्रोग्राम्स दा आनंद असी इकट्ठे माणांगे और इंजॉय करांगे। तुहाडे फेवरेट वाले गाने सुनाउण नूं मैं आ गया और नाल नाल गल्लां नाल नाल हर प्रोग्राम दा अपना अंदाज अपना टेस्ट अपना मज़ा चस्का सब कुछ होएगा तुहाडे लई तुहाडे खातर महाराज इत्थे। और साडी इस महफिल दा पहला पड़ा जिमें कि तुसी सब जानते हो साडा पहला प्रोग्राम जिस विच कहानी हुंदी है उस स्टार दी, जिस विच कहानी हुंदी है उस दिग्गज दी, उस संघर्षशील इंसान दी, उस संघर्षशील इंसान जिसने अपनी मेहनत दे नाल कला दे खेतर दे विच अपनी एक अलग थां बनाई हुंदी है। फिल्मी खेतर दे विच फिल्मी कहानियां दा ओ पूरा गुलदस्ता असी इस प्रोग्राम दे जरिए तुहाडे तक पहुंचाउने आ। साडा प्रोग्राम जिसका मैं आगाज कर चुका महाराज फिल्मी दुनिया, और इस दुनिया दा अपना ही एक रंग है, अपनी एक जगमगाहट है, चमकदार ये दुनिया जिस दी जिहड़ी चमक है ना जगमगाहट है वह सानू अपने वल खिंचदी है, और खिंचदी इसलिए है क्योंकि इत्थों दे स्टार्स जिहड़े ने वो साडे तक अपनी चमक पहुँचाउंदे ने, और साडा भी दिल करदा है कि असी भी उन्हां स्टार्स दी तरह चमकीए और पूरी दुनिया ते छा जाइए। अज एक ऐसी ही चमक वाली चीज ओ शै, मतलब ओ इंसान जिसने अपनी चमक दे नाल पूरे हिंदुस्तान नू जगमगाया, ओ आवाज जिस दी गूंज अज तक साडे दिलां ते वजदी है तां मतलब हर रंग दा एहसास हुंदा, भावें कोई गम दा एहसास होवे खुशी दा एहसास होवे उस दी आवाज दे विच हर रंग मौजूद सी, अज भी मौजूद है उस दी ओ गूंज, भावें ओ आप साडे विच अज मौजूद नहीं है बट अज असी उना दियां गल्लां करांगे, उना दे गाने सुनांगे और उना दे लाइफ दे नाल रिलेटेड बहुत सारियां गल्लां हरीश तुहानू सुनाएगा तुहाडे नाल शेयर करेगा, और ओ केड़ा शख्स है कौन है ओह ओ तुहानू मैं किवें दसां, मतलब नाम दा तलो तुहानू दसना ही है, गल्लां करनियां आपां उहनां दियां, बट इस गाने तो

हाँ जी, हुण तां तुहानूं पता लग गया है कि मैं किस सिंगर दी गल करन वाला, किस पर्सनैलिटी दी गल करन वाला है ना। 102.7 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे, और प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच असी हर वार किसी नवी शख्सियत की गल करते हैं, उस स्टार की, उस कलाकार की गल करते हैं जिस स्टार कलाकार ने अपनी मेहनत के दम से उस स्टार्स वाली उपलब्धि हासिल किया होंगे। अज असी गल करांगे मुहम्मद अजीज साहब की। ओ मुहम्मद अजीज साहब, ओ कमाल की वॉइस जिन्हों मुहम्मद रफ़ी साहब की तरह ही जाने जान लगा सी एक टाइम थे बिल्कुल। और कई लोग तो यह कहते सी कि ये शख्स मुहम्मद रफ़ी साहब का बेटा है, या कोई ये कहता सी कि उन्हों का कोई करीबी अजीज रिश्तेदार है, इस करके आवाज़ भी उदा दी है और उन्होंने जी शख्सियत सी वह भी उन्होंने वाग ही सी, मतलब संत आदमी, फकीर आदमी, और बड़े सीधे साधे भोले भाले वो इंसान हू बहू मुहम्मद रफ़ी साहब की तरह। और ये जी चीज़ है ना दोस्तों, जदों असी किसी शख्स को एडमायर करते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं उस शख्स को, अपना मानते हैं और चाहते हैं कि मतलब मैं उस तरह करा, उस तरह बना, उस तरह की काबिलियत मेरे अंदर कुछ गुण आ जाण, कुछ कण उसका जड़ा हैगा वो मेरे अंदर आ जाए, इदा जदों अच्छी सोचते हैं करते हैं तो वो क्वालिटीज़ ऑटोमैटिकली जनरेट होंदिया ने तुहाडे अंदर, भावें तुसी उस शख्स नूं मिले होवो या ना मिले होवो, कोई मुलाकात तुहाडी उन्हां दे नाल होई होवे या ना होई होवे, यही क्वालिटीज़ मुहम्मद अजीज़ साहब दे अंदर सी। और इस करके उन्हां नूं मुहम्मद रफ़ी साहब दे इन्ना करीबी मन्निया गया। मुहम्मद अजीज साहब जिन्हां दी अज असी गल करांगे, 2 जुलाई 1954 नूं पश्चिम बंगाल दे एक छोटे जे पिंड दे विच उन्हां दा बर्थ होया सी, अशोक नगर उसका नाम सी। और दोस्तों पश्चिम बंगाल का कोलकाता और उसका वो छोटा जहा इलाका जिथे उन्होंने बर्थ होया, छोटा जहा परिवार, और परिवार की माली स्थिति जेकर असी गल करिए इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं सी। और इस स्थिति करके मतलब कहिंदे ने कि जदों कोई स्टार बनना हुंदा ना, कोई स्टार पैदा हुंदा, मतलब हुण जिहड़ा हीरा है वह भी तो कोयले तो ही बनता ना, तो मतलब वो तो प्रथा चलती आ रही है कि मतलब जदों किसी ने उस

107 FM Rainbow ते कमाल दे ट्रैक्स और कमाल दिया उना दिया कहानियां सुन रहे हैं जिना दी असी गल कर रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच हरीश नाल है तुहाडे 107 FM Rainbow ते और मोहम्मद अजीज साहब दी गल कर रहे हैं फिल्मी दुनिया प्रोग्राम च और मोहम्मद अजीज साहब इन्नी ब्यूटीफुल आवाज इन्ना ज्यादा फील दे नाल भरी हुई कि जदों तुसी अखां बंद करके इन्हां दी आवाज सुनदे हो हुण ए गाना जिहड़ा सी हुणे जस्ट सुन रहे सी बहुत चिताते हो चाह हमसे मतलब सीधा डायरेक्ट दिल ते जाके वसदी है और एक एक अल्फाज एक एक लफ्ज़ जिहड़ा जिवें कोई प्रो के मतलब अपने अपनी जबान तो कढ रहा होवे मतलब नाप तोड़ के पूरी शिद्दत दे नाल कला कला अल्फाज निकलदा सी आवाज़ दे विचों हूबहू उसे तरह जिवें मुहम्मद रफ़ी साहब दा निकलदा सी और जिवें फील दे नाल लवरेज आवाज उन्हां दी हुंदी सी हूबहू इन्हां दे अंदर वो अंदाज सी वो फील सी और इसे करके इन्हां ने अपना वो जलवा पूरी दुनिया दे विच बखेरिया मुहम्मद अजीज साहब कलकत्ता दे विच बर्थ होया और परिवार दियां सारियां जिम्मेवारियां इस शख्स दे उत्ते सी कि उन्हां दे खाना पीण दा सारा जिहड़ा बोझ सी इन्हां दे मोढ़ियां ते सी क्योंकि परिवार की माली हालत इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं सी फाइनैशियल कंडीशन जिहड़ी है वो बड़ी वीक सी और इस करके इन्हां नूं कुछ बनना सी तां पहला पिछले जिहड़े मैंबर्स ने उन्हां दा ख्याल माता पिता दा ख्याल रखना पहला उन्हां दा पहली जिम्मेवारी सी पहला फर्ज सी और इस करके इन्हां ने स्टडी करनी स्टार्ट की जदों बट स्टडी दे विच मन नहीं सी लगता कहिंदे ने कि जदों भी किते कोई रिकॉर्ड सुनना इन्हां ने मुहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना वजदा होना या होर किसी भी सिंगर का गाना वजदा होना इन्हां दे फेवरेट तो मुहम्मद रफ़ी साहब सी बट जदों भी कोई गाना इन्हां ने सुनना तो खड़ जाना बस उस गाने वाल म्यूजिक वाल संगीत वाल आवाज़ वाल ध्यान होना और इस करके पढ़ाई वाल इन्हां दा ध्यान उस वेले भी बचपन दे विच भी बिल्कुल नहीं सी और गायकी वाले ही सी और माता पिता ने कहा कि हुण तां बेटा कमाना पैना और इस करके इन्होंने स्टार्ट किया किसी की मदद दे नाल कलकत्ता दे विच कहिंदे ने कि गालिब रेस्टोरेंट सी एक बहुत वड्डा रेस्टोरेंट सी और उत्थे इन्हां नूं गाउण दा मौका मिल गया मतलब जिवें अजकल किसी असी रेस्टोरेंट दे विच जाने आ तां बहुत सारे सिंगर उत्थे अपने शोज़ करते हैं और इस तरह इन्हों पक्का गालिब रेस्टोरेंट दे विच हर रोज़ गाउण दा मौका जिहड़ा मिल गया उत्थे शो करते सी गाते सी मुहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते सी और इन्हों उत्थे पैसे तो मिलते ही सी जो डिसाइडेड होया सी सैलरी और इस तो इलावा लोग जेडे सुनते सी उत्थे खाण पीण दे लई आउंदे सी बड़ा नामी रेस्टोरेंट सी उस वेले और वो लोग इन्हों खुश होकर पैसे भी देंदे सी टिप देंदे सी और उत्थों इन्हां दी पॉपुलैरिटी वधनी शुरू हुई लोग इन्हां कोलों गाने सुनदे मुहम्मद रफ़ी साहब दे किशोर कुमार दे और इन्हां दी जिहड़ी पॉपुलैरिटी सी अपने इलाके दे विच काफ़ी ज़्यादा हो गई और उस तो बाद उस रेस्टोरेंट दे विच एक शख्स आया और उस शख्स ने इन्हां नूं एक ऑफर दिता वो ऑफर की सी उसनू इन्नी ज़्यादा वधिया लगी इन्हों की आवाज़ क्योंकि बहुत नामी रेस्टोरेंट सी और उस रेस्टोरेंट दे विच अलीट क्लास लोग आउंदे सी खाना खांदे सी बह के आराम नाल सुकून दे नाल अपना टाइम स्पेंड करदे सी खांदे पींदे सी और नाल नाल मुहम्मद अजीज साहब दे गाने इंजॉय करदे सी और इदां गाने इंजॉय करदिया करदिया एक शख्स उस रेस्टोरेंट दे विच पहुँचदा कलकत्ता दा वो नामी प्रोड्यूसर सी और उसने बनानी सी अपनी एक फिल्म और उस फिल्म दे विच उसनू नीड सी एक आवाज़ दी यूनीक वॉइस दी और जदों उसने मुहम्मद अजीज़ साहब दी आवाज़ नू सुनिया तां मौका मिल गया फिर अजीज़ साहब नू उस तो बाद की होया सब कुछ दसांगा तुहानू बट इस गाने तो बाद इसे तरह चलदे रहो मेरे नाल क्योंकि

107 FM रेनबो ते हरीश नाले तुहाडे और प्रोग्राम चल रहा है जी फिल्मी दुनिया। और दोस्तों फिल्मी दुनिया प्रोग्राम च मोहम्मद अजीज साहब दे गाने सुना रहे हैं और नाल नाल उन्हां दी लाइफ दे नाल जुड़ियां होईयां बहुत सारियां यादां भी शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद अजीज साहब गालिब रेस्टोरेंट दे विच गाउंदे गाउंदे मौका मिलिया, हिट हो गए, ज्योति फिल्म दे विच गाना गाया, सुपर हिट होया और उस तो बाद फैमिली नू कहा कि 2 साल का वक्त चाहिए आ जाते ने मुंबई की धरती ते इत्थे आके स्ट्रगल करते ने। और एक उन्हां दी ना बहुत सारिया इंटरव्यूज है पुरानिया और एक इंटरव्यू मैं सुनी और उस विच मोहम्मद अजीज साहब कहिंदे ने कि मैं की दसा किवें बयान करा कि मैं मतलब किवें दा दौर रहिंदा जो कोई भी स्ट्रगल करता है संघर्ष करता है और तुहानू उस शहर दे विच जाने हो तुसी कम पाउण दे लई और खासकर फिल्मी दुनिया की गल करिए जदों तुहानू कोई भी नहीं जानता और उत्थे जाके तुसी अपना एक अलग अपनी आइडेंटिटी बनाउणी है क्रिएट करनी है दसना सारयां नू कि मैं फलाना शख्स हाँ मैनू गाना आउंदा सब कुछ आउंदा मैनू मौका चाहिदा और इदां मौका कोई नहीं दिंदा है ना। और वह भी इस तरह जाके स्टूडियोज़ दे विच जांदे सी कहिंदे सी कि मैं सिंगर हाँ मैं गाना मैनू कम चाहिए मैनू कोई भी गाना जेकर तुसी गाना गवा के देख लो और कोई गाना सुनदे सी गाना वो गाउंदे सी और कहिंदे सी बहुत वधिया आवाज़ बहुत हाँ हफ्ते बाद आना इदा ही वह बयान करते ने इंटरव्यू दे विच कहिंदे ने कि कहिंदे सी कि मिलना बाद में आना और आते रहना मिलने आते रहना कम नहीं सी कोई दिंदा और ये बहुत समा चलिया। बट एक शख्स उन्होंने मिलया वो प्रोड्यूसर आफताब फिल्म के मालिक उन्होंने मुलाकात होंगी अजीज साहब के नाल और वह मिलाते ने अगे एक होर शख्स के नाल और वह म्यूजिक डायरैक्टर से यंग टैलेंटेड म्यूजिक डायरैक्टर वह भी संघर्षशील से उस वे संघर्ष कर रहा इंडस्ट्री के अपना

मुकाम हासिल करने लिए और उसका नाम सी अन्नू मलिक साहब। और अन्नू मलिक साहब नवे सी बट उन्होंने फादर करके उन्होंने इंडस्ट्री के पछाण मिली सी, मतलब जानते सी लोग उन्होंने। और मुहम्मद अजीज साहब के नाल जो अन्नू मलिक मिले तो हौली हौली दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जी है दोवां दी एक दूसरे के काम आई, क्योंकि मुहम्मद अजीज सिंगर सी और अन्नू मलिक साहब म्यूजिक बनाते धुना बनाते और इस करके जो उन्होंने कोई फिल्म के गाने आते तो मुहम्मद अजीज साहब की आवाज़ के गाणियां डमी रिकॉर्ड कर लें और अपने जिन्हें प्रोड्यूसर डायरैक्टर्स होंगे से उन्होंने भेजते। इदा उन्होंने आवाज़ काफ़ी डायरैक्टर्स प्रोड्यूसर तक पहुँच गई अन्नू मलिक दे करके। और उस तो बाद एक फिल्म आती है 1984 दे विच, बट उस तो पहला अंबर फिल्म दे विच उन्होंने एक गाना गाया सी मुहम्मद अजीज साहब ने, बट वो फिल्म इन्नी नहीं चली और ना ही उस गाने तो नोटिस होए। और अन्नू मलिक नू उन्हां दी प्रतिभा दा उन्हां दे टैलेंट दा पता सी, इसे करके मनमोहन देसाई दी फिल्म आती है एक मर्द और इस फिल्म दे विच भी सिंगर दी जरूरत सी। और कौन कह सकता है कि लीड टाइटल ट्रैक जड़ा है वह गाउण का मौका मुहम्मद अजीज साहब न मिलेगा, बट अन्नू मलिक ने वह गाना इन्हों को गवाया, प्रोड्यूसर डायरैक्टर साहब न पसंद आ गया और मनमोहन देसाई ने मोर लाई और मुहम्मद अजीज साहब की आवाज़ आई उस गाने दे विच जो होया सुपरहिट आही गाना सी।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर।

0: दिल तो नहीं कर रहे क्योंकि कहानियां गाने इन्ने ज्यादा ने मोहम्मद अजीज साहब दे कि मैं तुहानू दस नहीं सकता सुना भी नहीं सकता इन्ने ज्यादा गाने ने सारा दिन उन्होंने गाने पूरे नहीं होने जेकर मैं सुनान बैठा था बट ए कमाल दा ट्रैक और उन्होंने चुनिंदा गाने तुहानू अज सुनाए और उन्होंने गल्लां कीतियां और वह हमेशा साढ़े दिलों च जिंदा रहेंगे और अज असी 102.7 FM रेनबो के जरिए उन्होंने ट्रिब्यूट दी और हुण वधदे आं अगे साढ़े अगले पड़ाव वाल क्योंकि सफर साढ़ा 11 बजे तक इसे तरह चलता रहेगा। 102.7 FM रेनबो ते
1: कठिन है प्रश्न ये भैया आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे क्या करते हो प्यार अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी
2: तो क्या कहा आपने
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू सुबह

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नवी दिल्ली च गलबात दौरान कई खेतरां च दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा कीती। रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही पंजाब दा दौरा करनगे। पंजाब दे मुख चोण अफसर आनंदिता मित्रा ने कहा कि सूबे च 1 जुलाई तक 97.44% गणना फार्मा दी वंड मुकम्मल हो गई है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय डॉक्टरी दिवस नूं समर्पित पहले सूबा पदरी सम्मान समारोह च सरकारी ते निजी हस्पतालां दे डॉक्टरां ते अधिकारियां नूं सम्मानित कीता। पंजाब सरकार ने हेल्थ वर्करां दीआं 619 असामियां भरन ते उद्योग विभाग दे अहुदेयां नूं रणनीतिक तौर ते सुरजीत करन दी प्रवानगी दित्ती। सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने

0: 107 एफएम रेनबो दे हरीश नाल है तुहाडे और इस वेले प्रोग्राम चल रहा जी प्रोग्राम मस्ती जंक्शन।
1: ओए ओ तैनू इधर मैं सिर्फ बहन लिख के तू बोलन लग पया हो चल साइड दे मेरी गल नहीं मानता लिसनर जुड़ गए ने एक साइड दे होके बह जा। हेलो
2: हेलो
1: हेलो कौन गल कर रहा भाई सवाल दा जवाब दियोगे राइमा जी? चलो फिर हो जाओ तैयार। सवाल दा सवाल ए है जी हाथी हुंदा जिहड़ा हाथी देखा कभी मैनू दसो हाथी फ्रिज दे विच किवें बढ़ेगा बढ़ेगा किवें बढ़ेगा। हां जी राइमा जी बेटा केड़ी क्लास पढ़दे हो? हां फिर दियो जवाब हाथी नू देखिया ना तुसी? हां
2: जी।
1: हां दसो फिर हाथी फ्रिज दे विच किवें बढ़ेगा बेटा? हां जी नहीं वाड़ होना। ओहो पर बढ़ेगा किवें ता दसो मैनू बेटा जी। हाथी फ्रिज दे विच बढ़ेगा पहला ओनू खोलना पेगा फ्रिज दा दरवाजा खोलो हाथी नू अंदर रखो ते दरवाजा बंद कर दो। ओ बेटा जी हाथी ओ हाथी रबड़ दा हाथी है की गल्ला करी जांदे बेटा जी वड्डा हाथी नहीं रबड़ आला हाथी है। हाथी कह तुहानू हाथी तो जेड़ा मर्जी हो सकदा ना और इस करके हुण दसो मैनू जिराफ फ्रिज दे विच किद्दां बढ़ेगा?
2: हां जी
1: जिराफ जिराफ देखिया कभी लंबा जिहा बेटा जिराफ किवें बढ़ेगा? कोई गल नहीं। हां हेलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओहो किदा बढ़ेगा पहला हाथी नू तो बाहर कढ लो
2: हाथी नू बाहर कढ के
1: हां थैंक यू बेटा गल करन दे लई धन्नवाद। और जेकर तुम भी चाहते हो कि तुहाडे नाल भी मेरी गलबात होवे छेती छेती मेरे तक पहुंचना 2342174 नंबर डायल करना 0181 लाना है और मेरे तक पहुंच जाना और फिर सवालों के जवाब देने ने तुम देखते हैं तुहाडे को सवालों के जवाब दिते जाते ने या फिर तुम भी मेरिया गलों के फस के रह जाने हो।

0: बिल्कुल जी बिल्कुल। और तोती प्रधान कदे गलत हो नहीं सकता, इसे करके सही है बिड़ू, सही है। और इस वेले साढ़े एक होर लिसनर साढ़े नाल जुड़े ने, गल करते उन्होंने नाल, सवाल का जवाब दे पाते ने कि नहीं, आ देखना पड़ेगा सानू। हैलो,
1: हैलो,
0: सत श्री अकाल, कौन गल कर रहे हो जी?
1: मैं नमन प्याला तो।
0: नमन जी, की हाल चाल जी तुहाडे? ठीक है, बड़ा ढिला जा ठीक आया, की चक्कर है? छुट्टियां खत्म हो गई इस करके?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: हुण स्कूल जाना पड़ेगा?
1: जाना
0: पैना बेटा, पढ़ना लिखना और जिंदगी च एहो ही चाहना है कि पढ़ना तो सिर्फ तोती प्रधान वांग पढ़ना है तुसीं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है कि नहीं?
1: हाँ जी सर।
0: हाँ, क्योंकि गलबात तोती प्रधान अंदर ही होर नहीं कहीं अंदर हैगी बेटा। चलो सवाल का जवाब दियो फिर।
1: ठीक है सर जी।
0: हाँ देखो भाई, हवा चलती है
1: हाँ जी,
0: पर सानू दिखाई क्यों नहीं देंदी? बेटे हवा चलती है पर सानू विखाई क्यों नहीं दिंदी? इहदा एक बड़ा वड्डा रीजन है। दिओ छेती छेती जवाब, देखदे आं तुसीं किन्नी क पढ़ाई कीती गई, छुट्टियां एवें गुजार छड्डियां ने। हां जी बेटा जी, नमन बेटा जी, हैलो, गुआच गए हो?
1: हैलो,
0: हां हां, सवाल दा जवाब दियो बेटा।
1: चल जी, दरख्त हिलदे कर।
0: हां जी,
1: दरख्त हिलदे कर।
0: ओ, दरखत हिल, दरखत दिखदे सानू, हवा हवा क्यों नहीं दिखदी? मैं कहन दिया। हाँ बेटा, आया जवाब कि नहीं? नहीं आया। बेटा केड़ी क्लास पढ़ते हो? ओहो बेटा, तेनू पता ही नहीं हवा हवा क्यों नहीं दिखदी सानू? बेटे हवा बड़ी शर्मीली हुंदी है। इसे करके सानू हवा बखाई नहीं दिंदी। हाँ, अज तो बाद जेड़ा तैनू पूछे हवा क्यों नहीं दिखाई दिंदी, की कहना है?
1: शर्मीली हुंदी।
0: हाँ बिल्कुल, हवा बड़ी शर्मीली हुंदी इसलिए सानू दिखाई नहीं दिंदी। बेटे ठीक है, और वड्डा होके की करना तू?
1: डॉक्टर
0: बनना। ओ यार, ओ भरा, ओ हेलो, ओ तोती प्रधान सिखाया तेनू यार, तू भूल गया। तोती प्रधान जिंदाबाद, कह दे एक बारी।
1: तोती प्रधान जिंदाबाद।
0: और जेकर तुम भी चाहते हो कि तुम मेरे ना गलबात करो, 243-174 नंबर डायल करना, मेरे तक पहुंचना, और फिर आप मिलके मौज मस्ती जी चल रही है उन्हू होर भी चार गुणा वधा देंगे। आयो फिर छेती छेती नंबर डायल करना है, 243-174-0181 लाना है, और फिर मेरे तक तुसी पहुंच जाना है महाराज तोती प्रधान तक।

0: वो है मेरी बीवी नंबर वन। महाराज जिंदगी दे विच जहान दे विच एक ही बंदा जे महाराज जिहदे को तूं ही प्रधान डरदा जे आही बंदा जिहदा नाम लिया जा रहा वो है मेरी बीवी महाराज बीवी सिर्फ इंसान एक ही बंदे तो डरदा है और तूं ही प्रधान भी उस उन्हां इंसानां दे विचों एक है जिहड़ा बीवी तो डरदा है। एक लौता बंदा जिहड़ा तोती प्रधान नूं हरा सकदा उह सिर्फ बीवी है बाकी किसे च दम नहीं कि तोती प्रधान नूं हरा पावे क्योंकि तोती प्रधान की गलबात इन्नी। एक लिसनर जुड़े ने गल करदे उहनां दे नाल। हैलो हां जी फतेह जी कौन गल कर रहा जी महाराज सत श्री अकाल कुलदीप जी की हाल चाल जी फटाफट तुसी सवाल दा जवाब दियो कुलदीप सी और तैयार हो तैयारी है जी सवाल है जी तुहाडे वल आ गया ए जी मुर्गे ने इट ते दित्ता आंडा टुटिया नहीं क्यों टप करके पिया ही ना जरा थोड़ा जा खड़ा ही बंदा उस टाइम जो आंडा दिता उन्हें समझ सकते हो तुसी टुटिया क्यों नहीं महाराज टप कोई चीज महाराज भारी चीज डिगेगी कोमल हुंदा उस टाइम आंडा तो टुटिया क्यों नहीं
1: सारा कोमल तो हुंदा ही है एक था डिगया पिया
0: महाराज कुलदीप साहब गलबात है नहीं तुहाडे अंदर महाराज मुर्गा आंडा कित्थों दिंदा
1: धन्यवाद
0: कुलदीप जी मुर्गा आंडा नहीं दिंदा ध्यान रखियो अगो तो धन्यवाद गल करन दे लई और जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि मेरे तक पहुंचो सवाल का जवाब दियो छेती छेती मेरे तक पहुंचना 2342174 नंबर डायल करना फिर तो थी प्रधान दे नाल तुहाडी गलबात होएगी और देखदे आ हले तक मैनू एडा कोई कलाकार बंदा दिखिया नहीं हैगा एवी ए हरीश जिहड़ा बाहर खड़ा मैनू झाकण डिया हले भी मैनू कहिंदा बड़े टैलेंटेड बंदे होणगे तुसी जरा ध्यान नाल सवाल पुछियो औखे सवाल पुछियो हले तो मैं औखिया ते आया नहीं महाराज हले औखिया ते नहीं आया मैं ते तुहानू कोई सवाल का जवाब नहीं आउण डिया खैर देखते हैं किन्नी क गलबात रह गई थोड़े अंदर किन्ना क टैलेंट हैगा आ जाओ फिर छेती छेती 2342174 डायल करके

देश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। भारत ते जापान ने आर्थिक ते ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल ते एआई समेत कई समझौतियां ते दस्तखत कीते। अंतरराष्ट्रीय दहशतगर्दी ते एक व्यापक सम्मेलन लई भारत दी तजवीज नू एक बार फिर तो संयुक्त राष्ट्र महासभा च हमायत मिली है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी तेल सोध समर्था नू तेजी नाल वधा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब का दौरा करेंगे ते सूबे नू वड्डे रेलवे ते होर प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे। दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सेल ने आईएसआई दी हमायत वाले अंतरराजी दहशतगर्दी ते हथियारां दे नेटवर्क ते कार्रवाई करदिआं पंजाब तों फड़े मुलजमां समेत चार मुलजमां नू गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे मुख चोण अफसर आनंदिता मित्रा ने कहा कि सूबे च 1 जुलाई तक 97.44% गणना फार्मा दी वंड मुकम्मल हुई है। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस नू समर्पित पहले सूबा पदरी सम्मान समारोह च सरकारी ते निजी हस्पतालां दे डॉक्टरां ते अधिकारियां नू सम्मानित कीता। पंजाब सरकार ने हेल्थ वर्करां दीआं 619 असामियां भरन ते सनत विभाग च अहुदिआं नू रणनीतिक तौर ते सुरजीत करन दी प्रवानगी दित्ती। सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने

ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 तहत लुधियाना च विद्यार्थियों नाल कीता सिद्धा संवाद, किया सूबे च जल्द ही AI पाठ्यक्रम होवेगा स्टार्ट। बिजली मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि ठेके ते काम करने वाले मुलाजमान नू रेगुलर करन ते आउटसोर्स अमले नू ठीक ते लियाउण दा फैसला निरपक्ष ढंग नाल लागू किया जाएगा। मौसम विभाग वालों अज तो 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ च कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते मीह पिया। SNFM न्यूज़ हेडलाइंस हुण तो कुछ कु पल बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे।

107.7 FM रेनबो ते इस वेले तुसी हरीश दी आवाज़ नूं सुन रहे हो और नाल नाल तुहाडे फेवरेट ट्रैक्स भी मैं प्ले कर रहा जी। और अज एक होर मैसेज पढ़ते हाँ, प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक जी को प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार जी, मूवी गजल रंग और नूर की बरसात, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, एनी सॉन्ग में भी शामिल कर सकते हो जी। आपका हर पल खुशियों के साथ भरा रहे, थैंक यू सो मच जी। और इना दा असी गाना प्ले जरूर करते हैं जी। आज फिर स्टार्ट करते हैं जी ये गाना, रंग और नूर की बारात।

युवक नमस्कार नमस्कार जी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार, फिल्म प्यासा सावन, लता मंगेशकर जी और सुरेश वाटकर जी की आवाज, मेघारे मेघारे। आज फिर सुन दें जी ये ट्रैक और वध दें आगे।

0: क्या जीना और क्या मर जाना,
1: ऐसा होता है याराना।
0: अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाहन छोड़ी, हो हो
2: हो हो हो। तरबीर फिल्म का गाना तुसी इंजॉय किया, और अजकल इदा दियां जोड़ियां कित्थों लभदियां ने महाराज, नहीं लभदियां ना। 107 एफएम रेनबो ते तुसी हरीश दे नाल इंजॉय कर रहे हो जी ये दिलचस्प प्रोग्राम। मैसेज पढ़ते हैं, सर प्रेम नमस्कार। फिल्म काला बाजार रिम झिम के तराने लेके आई बरसात, पसंद करता दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ये गाना सुनना चाहते ने, तो असी जरूर इन्हों की फरमायश करांगे जी पूरी। और सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर, एनी सोंग मेरे तक पहुँचे जी इन्हों का मैसेज। एक होर मैसेज आया जी, खुदगर्ज फिल्म दिल बहलता है आपके आ जाने से गाना सुना चुका जी मैं पहला। भोपाल राजस्थान तो मैसेज है, धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान छींपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें जी, कह रहे ने। हो गया जी थोड़ा मैसेज शामिल जी, और ठा ठा कर दे मैसेजेस मेरे लिसनर्स मेरे तक पहुंचा रहे ने। सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी, मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो मैसेज पहुंचे जी मेरे तक। आप अगला मैसेज जी, प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, कोई भी फिल्मी गीत कहते ने सुना दो। प्रोग्राम लाइव

सुन रहे हैं जी, बहुत चंगा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच ये प्यार मेरे तक पहुँचाने के लिए। अगला मैसेज है जी, सत श्री अकाल कहिंदे ने, सत श्री अकाल जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो यशमीत यशु सौम्या सिंह अविरल सिंह कोई भी गीत कहिंदे ने सुना दिओ। थैंक यू सो मच ये मैसेजेस दी चढ़ी मेरे तक पहुँचाने के लिए। आओ फिर रिम छिम के तरह ने वाला गाना सुनिए जी।

नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। वाहेगुरु की मोहब्बत में खुश रहो। रेनबो जलंधर वालो आनंद माणो। मेरे तक पुजे जी सतीश नेजा बिबला नेजा दिल से कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू मैसेज भेजने के लिए थोड़ा। और फिलहाल असी मेरे महबूब कयामत होगी गाना प्ले करिए जी। पहला आ जाओ।

अगला मैसेज मेरे तक आया जी, साढ़े लिसनर मैसेजेस भेज रहे ने, फुल भेजे जी, थैंक यू सो मच। और मैसेज अगला जी मेरे तक पहुंचा, बुलडाणा इस्माइलपुर महाराष्ट्र तो, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और साधना पवन पाटिल मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे ने जी। और अगला मैसेज, नमस्कार, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ जलंधर पंजाब से। मुझे गाना सुनना है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, ते आ जाओ फिर। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतने इस ट्रैक के नाल ही ख़त्म कर दें जी, और वध दें अगे। जिन्हां दे मैसेज रह गए, टेंशन नहीं लेनी, कल जरूर पढ़े जाएंगे जी।

हाजिर है हरीश एक बार फिर तो, और आगाज ए शाम गजल हो चुका है, और इस मदमस्त और खुशनुमा रात नू होर भी खुशनुमा होर भी मदहोश बनाउण दे लई साडा ए प्रोग्राम शाम गजल, जिस विच फीलिंग्स एहसास इमोशंस बखूबी हुंदे ने, और लबरेज प्रोग्राम एहसासां दे नाल, और इस एहसास नू जीउण दे एहसास दे नाल सानू एक बार फिर तो ये फील कराउंदा कि जिंदगी दे विच जज्बात किन्ने जरूरी ने, किन्ने अहम ने, वो यार वो प्यार जो साडे कोलों अलग तां हो गया पर विसरिया नहीं है, उहनां नू साडे तक दोबारा पहुँचाउंदा गजलां दा ये प्रोग्राम शाम गजल।

तुमसे मुंह मोड़ जाने की। मैं कोशिश में हूं खुद से झूठ बोलने की। मैं कोशिश में हूं अपने मन को समझाने की। मैं कोशिश में हूं तुम्हें भुलाने की। मैं कोशिश में हूं तुम्हें भूलने की। मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं होऊंगा। न जाने क्यों, पता नहीं क्यों, पर मैं कोशिश में हूं तुम्हें भूलने।

एक नन्हा सा बच्चा किस तरह कितनी शिद्दत से किसी चीज को चाहता है ना, उसे किसी और चीज से कोई वाबास्ता नहीं होता सिवाय उस चीज से। उसके सपने, उसका वक्त, सब कुछ उसे एक चीज में लगा होता है जो उसे चाहिए होती है ना। उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं भाता। हमारी हालत भी इस वक्त उस बच्चे की तरह है, बस फर्क इतना है कि बच्चे को उस चीज से वाबास्ता होता है और हमें तुमसे है।

तुमसे बात करने और तुमको मिलने की तमन्ना हर वक्त रहती है। तुमसे हम दूर होते हैं तो फिर भी तुम्हारे पास होते हैं और तुमसे हर वक्त मिलने की एक आस जगी रहती है इस दिल में। और जब कभी भी वक्त मिलता है और दिल करता है कि भाग कर तुमसे मुलाकात हो जाए, लेकिन ये मुलाकात बड़ी तड़पाती है क्योंकि तुमसे मुलाकात होती ही नहीं। और रह रह कर वो लम्हे मुझे सताते हैं, मुझे कहते हैं कि बस भी करो, अब और कितना काम करोगे। अपने शहर से दूर, अपने अपनों से दूर, अपने हमदम से दूर, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने अपनों से, अपने हमदम से दूर, रोजमर्रा की जरूरतों की खातिर दूर बैठे होंगे और याद कर रहे होंगे अपने अपनों को, है ना। और वो अपने अपनों से दूर होकर भी उनके पास रहते हैं, उनके एहसास में, उनके जज्बात में, हमेशा हमेशा के लिए।

गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास, गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास, क्या चाहता है मुझसे, ना जाने कौन से छिपाए हैं इसने भीतर अपने राज, जो सुनाई नहीं पड़ते पर गूंज रहे हैं मेरे आसपास। एक महक है जो बसना चाहती है सांसों में, एक चमक है जो लेने लगी है अंगड़ाई आंखों में, क्या ये नया अंजाम है या आगाज, गुजरे वक्त का लिबास पहन कर आया ये एहसास मेरे पास, मेरे पास।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है हरीश नाल तुहाडे और न्यूज ऑन AIR ऐप ते हरीश सब दा स्वागत करदा, अपने सारे लिसनर्स दा स्वागत करदा और इस वेले तुसी मेरे नाल हो और ये गहराउंदी हुई रात होर भी सोहनी लगेगी, होर भी महकेगी और थोड़े साथ दे नाल और नाल नाल रेट्रो सॉन्ग्स दे साथ दे नाल प्यार दे नाल।

एक बात है दोनों के दरमियां जो बेकरार है कुछ कहने को, मगर खामोश है वो, पर मचल रही है जुबान से होठों तलक आने को। कैसे कहे कुछ, क्या कहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वो बात जो सांस ले रही है जज्बातों में, जो चुपके चुपके से झांक रही है आंखों में, जो शायद जी रही है ख्वाबों में, जो कभी बहुत बातूनी थी मगर आज बेआवाज है, पर सुकून से भरी इनायत है वो। एक बात दोनों के दरमियान जो बेकरार है कुछ कहने को, पास आने को मगर खामोश है वो, खामोश।

शायद आप में से किसी को हुआ हो, मुकम्मल होकर भी अधूरेपन का एहसास, शोर में रहकर भी मौन का आभास, गूंजती हुई शहनाइयों का अचानक से सुन पड़ जाना, मचलते हुए जज्बातों का एकदम से खामोश हो जाना, चलते चलते राहों में खुद ही रास्ता भटक जाना, खुशियों संग यारी निभाते निभाते खुशियों से ही उब जाना, नन्ही उम्र में उसारा हुआ महल खुद ही पल भर में ढह जाना, हर दर्द गम मुस्कुरा के सह जाना, खुद से ही कभी कभी ना मिलने के बहाने बनाना, बीते लम्हों की कैद से आजाद होने की आस, शायद आप में से किसी को हुआ हो मुकम्मल होकर भी अधूरेपन का एहसास। और जब किसी को ऐसा एहसास होता है तो यही होता है।

कभी सफर छूट जाएगा, ये शहर भी छूट जाएगा। जहां हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है, वो दर भी छूट जाएगा। और कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो घर छूट जाएगा। और इस दुनिया में जो भी हमारा

है, एक दिन हमसे दूर हो जाएगा, ये तो तय है। और फिर इसीलिए किसी भी चीज के साथ इतना लगाव, इतना इतना जुड़ाव होना नहीं चाहिए। लेकिन साहब ये तो दिल है, किसी से भी लग बैठता है, किसी को भी अपना बना लेता है, किसी के साथ भी एक रिश्ता सा बना लेता है, जैसे घर के साथ, गलियों के साथ, मित्रों के साथ, साथी के साथ, शहर के साथ, है ना।

आगे सफर था और पीछे हम सफर था, रुकते तो सफर छूट जाता, चलते तो हम सफर छूट जाता। मंजिल की भी हसरत थी और उससे मोहब्बत भी थी। ऐ दिल अब तू ही बता, उस वक्त मैं कहां जाता। मुकद्दर का सफर भी था और बरसों का हम सफर।

पर भी था। रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिखर जाते। और हमको शायद बिखरना मंजूर था, हम उससे दूर नहीं हो सकते थे।

तुझसे दूर जाने से डर लगता है, तुझसे दूर जाने से डर लगता है मुझको, अब मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। तुम्हारे साथ के साथ होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वेले तुसी सुन रहे हो हरीश दे नाल एक प्यार का नगमा है, और इस प्रोग्राम दा ये ट्रैक थोड़ी पेश खिदमत है लता मंगेशकर जी दी आवाज़ दे विच।